नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण आपके लिए 918 किलोहर्ट्ज, DRM मोड पर 909 किलोहर्ट्ज, FM के 100.1 मेगाहर्ट्ज बैंड पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आपके अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर आरंभ होते हैं। अपने कार्यक्रमों में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

98 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, तत्पश्चात भक्ति आराधना का दैनिक कार्यक्रम वंदना लेकर के हम हाजिर होंगे। कृपया समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं।

वंदना के सभी रसिक श्रोताओं को। आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस सुहानी भोर की शुभकामनाएं। नमस्कार। श्रोताओ, जब मानव अपने कर्मों द्वारा और ईश्वरीय चिंतन द्वारा अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब महसूस करता है और जब उसे संसार के विषय भोगों से विरक्ति हो जाती है, उसे यहाँ की दृश्यमान भौतिक वस्तुओं में कोई सार नज़र नहीं आता, तब उसके हृदय से करुण पुकार निकलती है और वह अपने मित, अपने परमात्मा, अपने स्वामी को कुछ यूं पुकारता है।

जब उस परम शक्तिशाली परमात्मा से हमारे संबंध मित्रवत हो जाते हैं, तब किसी न किसी दिन वही मालिक हमें अपने गले लगा करके कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं मुझे याद किया, मेरे मित्र क्यों इतने संकट में पड़े रहे, मेरे सखा मुझे शर्म आती है कि मैं अपना कर्तव्य भूलकर वैभव और शान शौकत की जिंदगी जीता रहा और मेरा सखा मेरा मित्र परेशानी में इधर उधर भटकता रहा। और इस तरह से जब वह परमात्मा अपने मित्र को गले लगाता है तो वह दृश्य अत्यंत मनोहारी अत्यंत सुखकर होता है।

जब मन हर तरफ से हताश हो जाता है, उसे लगता है कि सब तरफ सिर्फ अंधेरा है, तब कहीं हल्की सी एक रोशनी की किरण उम्मीद बनती है, एक सहारा बनती है उस अंधेरी अमावस की काली रात को काटने के लिए। और यह किरण आप में, हम में, सब में मौजूद है। निराश न हो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, रात होती है, और प्रत्येक रात के बाद उजली सुबह हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी होती है। हिम्मत और हौसला रखें, याद रखें उस परमात्मा को जिसने संसार में आपको भेजा है, और प्रत्येक जीव जो इस धरती पर आता है वह यूं ही नहीं आता। कुछ काम, कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटी उसके लिए होती है जो उसे पूरा करना होता है। बस प्रार्थना की शक्ति के साथ जुटे रहिए अपने काम में, अपने कर्तव्य में। अगर ज्यादा बोझ लगे तो सच्चे हृदय से अपने मन की बात, अपने किसी भी मीत को, सखा को, उस परमात्मा को कह दें, हल्के हो जाएं, और फिर उसके बाद देखें कितना खुशनुमा जीवन हमारा आगे का हो जाता है। और फिर प्रभु तो इतना दयालु है कि कोई उसे पुकारे तो सही, वो तैयार बैठे हैं हर तरह से हमारी मदद करने को।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज पर। मैं कमल पारीक आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वंदना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मीरा के इस सुंदर से पद के साथ। सीमा मिश्रा और साथियों ने इसे गाया।

शुद्ध आपने ट्यून किया है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की खूबसूरत प्रस्तुति वंदना कार्यक्रम। आइए वंदना संपन्न करें इस आरती के साथ।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आपने सुना। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। वंदना के पश्चात ये समय है चिंतन का।
1: आज इस संसार के अंदर मानव एक तन तक सीमित रह गया है। दिखने में प्रत्येक इंसान इंसान नजर आता है, लेकिन इंसानियत नाम की वो चीज़ उस इंसान के अंदर, इंसानियत नाम का वो गुण आज ख़त्म हो चुका है। और इस भौतिक दौड़ के अंदर इंसान आज इतनी तेज़ी से दौड़ता जा रहा है कि वो दौड़ते दौड़ते अपने आधार से दूर हो चुका है। और हमारे संत महापुरुष इस बात पे जोर देते हैं कि जब एक इंसान अपने आधार से टूटता है तो उसके जीवन के अंदर दुखों का आगमन होता है, और वो दुख इंसान अपने ही कर्मों के द्वारा भुगतता है, अपने ही कर्मों के आधार पर उन दुखों की प्राप्ति करता है। क्योंकि इंसान सच में सुख को जानता नहीं है। जब जब ये इंसानियत इस दुख के पड़ाव पे पहुंची, तब तब इस धारा के ऊपर एक ब्रह्मनिष्ठ उस ईश्वर को इस धारा के ऊपर अवतार धारण करना पड़ा, और फिर से उस मानव को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अपने मूल के साथ जोड़ते हैं, जिससे आज का प्रत्येक इंसान दूर है। क्योंकि इंसान को शांति और समाज को क्रांति, आज इन दोनों पहलुओं की, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। इंसान सुख की खोज तो करता है, लेकिन उस सुख को जानता नहीं कि वो सुख है कहाँ। कहते हैं हमारे संत महापुरुष कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विद आवे हाथ। कहते कि इंसान खोज करता है सुख की संसार से, लेकिन इस संसार ने आज तक सुख दिया किसको है। अगर आप बड़े से बड़े एक राजा को भी देखते हैं तो वो सम्राट भी दुखी है, एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी दुखी है। इंसान की ये तृष्णा दुख का कारण बन चुकी है। और कहते कि जब तक इंसान अपने बारे में नहीं जानता, अपने आप को नहीं जान लेता है, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। और उसके जीवन में जब एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु आता है, संत आता है, उसको जीवन जीने की वो कला देता है, जिस कला से बिछड़ता है। हमारे संत महापुरुष इंसान को बार बार चेताते हैं कि आप जागो जागो, लेकिन इंसान जाग नहीं पाता है। कारण, क्योंकि वो एक ऐसी निंद्रा में है। अगर वो इंसान को हम जगाना चाहते हैं, उसके जीवन के अंदर एक ऐसे इंसान का पदार्पण हो, ऐसा एक इंसान उसके जीवन में आए जो खुद जागा हुआ है, जब एक जागा हुआ व्यक्ति उसके जीवन में आता है, वही उसको उठाता है। और आज पूरा संसार सोया हुआ है, और इस संसार को जगाने के लिए ईश्वरीय सत्ता को फिर से इस धारा के ऊपर आना पड़ता है, और फिर उसको जगाकर उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराकर, जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस सुख का

0: अनुभव वो अनुभूति अपने घट में करता है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं। इंसान बाहर सुख ढूंढता है, लेकिन सुख उसके हृदय में है, कि जैसे एक मृग है, मृग उस कस्तूरी की खोज करता है, उसे खुशबू आती है, वो घास फूस अनेकों में जाकर उस खुशबू को ढूंढता है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ होता है कि जिस कस्तूरी की खोज वो बाहर करता है, वही कस्तूरी उसके नाभि के अंदर है, और इसी खोज के अंदर वो एक दिन उस मौत को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, अगर आप सुखी होना चाहते हैं, आपको संत महापुरुषों के उसी मार्ग पे फिर आना पड़ेगा, वो पंथ वो रास्ता फिर अपनाना पड़ेगा जो रास्ता हमारे संत महापुरुषों के पास था। अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो उस सुख को देने वाले उस परमात्मा को जान लो, जिसके बारे में हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नहीं कोई।
1: चिंतन कार्यक्रम में आपने मानवता विषय पर स्वामी धर्मेंद्रनंद के विचार सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले बाकी कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:10 पर खेती नावास्ते कार्यक्रम में सुनिएगा वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए विषय पर जानकारी। मानस गाना आप सुना करते हैं रोजाना सुबह 7:20 पर। सुबह 7:30 इस केंद्र का लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात प्रसारित किया जाएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। प्रातः 9:10 पर मरुमंगल कार्यक्रम में कलाकार होंगे पेमाराम। सुबह 9:30 से फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे दिन में 12:30 तक लगातार। इस दौरान सुबह 9:30 पर फिल्म संगीत, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुबह 10:00 और फिल्म संगीत 11:00 होगा। 12:05 पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। 12:30 आप सुनेंगे सुगम संगीत। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में जानकारी सुनिएगा विभिन्न कवकनाशी घर पर कैसे तैयार करें। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम लेकर किरण कुमारी हाजिर होंगी। सर्वाइकल में फायदेमंद योग, मॉड्यूलर किचन कितना उपयोगी, आधुनिकता और संस्कार और इसी तरह के अनेक सामयिक विषय महत्वपूर्ण जानकारियों सहित कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। महिलाओं के मनोरंजन हेतु संगीत भी उपलब्ध होगा। फिल्म संगीत सुनेगा दिन में 2:30 से 3:00 तक। दोपहर बाद 3:00 से हमारी उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे। संध्या 4:00 सुनिएगा संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम। युववाणी में आज के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा इस कार्यक्रम में हुआ करती है। युवा श्रोताओं के मनोरंजन हेतु फिल्मी गाने भी सुनवाए जाते हैं। संध्या 6:05 पर सराइकी जबान पर आधारित झोंक माही दी कार्यक्रम हम आपको सुनवाते हैं। संध्या 7:00 चौपाल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटक जान। इस नाटक के लेखक हैं गोपीराम गोदारो, प्रस्तुतकर्ता राजेश चट्ठा। इसके अतिरिक्त चौपाल में वेद प्रकाश वर्मा आपको जानकारी देंगे जैविक तरीके से कीट नियंत्रण, मधुमक्खी पालन, खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण और ऐसे ही दूसरे तमाम विषयों पर। उपलब्ध होने पर बाजार भाव मौसम की जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत होगा संध्या 7:45 पर। फिल्म संगीत पर आधारित एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स केन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:30 कंट्री वाइड प्रोग्राम दिल्ली से रिले किया जाएगा। विज्ञान पत्रिका का कार्यक्रम रात्रि 10:00 हम अपने जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे रात 10:30। रात्रि 11:00 हिंदी और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के पश्चात इस केंद्र के कार्यक्रम संपन्न होंगे। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 326.79 यानी 918 kHz पर, इसके अलावा 918 kHz के अतिरिक्त 909 kHz पर DRM मोड पर, FM के 100.1 MHz पर और मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से और इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं। इस केंद्र के कार्यक्रम प्रत्येक सुबह 5:50 पर आरंभ होते हैं, जो जारी

0: रहते हैं रात 11 बजकर 10 मिनट तक लगातार। इस समय 6 बजकर 55 मिनट होने को हैं। अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन दिल्ली से लेके जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्णस्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रियस्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं, विद्रोहः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं, शस्त्राणां क्रयविक्रयणं, मानवव्यापारं, वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनाञ्च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनं मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्व राजस्थान, मध्यप्रदेश, उपहिमालयीय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतम्

0: अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसङ्ख्यासु एव उपलब्धा अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्र में कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल

0: at 2026 Pune International Grandmaster Round Robin. In men's cricket, India will face England in the fourth T20 International of the five-match series at County Ground in Bristol tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। आज जानकारी प्रस्तुत है वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं और इससे होने वाले लाभ।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा वर्मी कंपोस्ट और आ एक जीवाशयुक्त खाद मानी जाए जैविक खेती के अंतर्गत या कैस कहाँ का एक खेती को आधार मानी जाए इन वास्ते वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका और यहाँ लाभ के कुछ है बात करांगा। तो किसान भाइयों आज की सघन खेती के युग में भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के वास्ते प्राकृतिक खादों का प्रयोग बढ़न लाग रही है। हाँ, प्राकृतिक खादा में गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद खास मानी जाए। पिछले 20 साल से यूँ कंपोस्ट बनाने की एक नई विधि विकसित करी गई है जगह में केंचुए को प्रयोग करी जाए जगह में वर्मी कंपोस्ट तैयार हुए और वर्मी कंपोस्ट केंचुआ की मदद से निर्मित जैविक खाद मानी जाए जगह ने किसान भाई खुद बना सके और आपके खेत में भी इस्तेमाल कर सके। किसान भाइयों कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि की अगर बात करा तो सारों पहले तो सही जगह में उपयुक्त नमी तापमान निर्धारित किया जा सके इनको चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इनके बाद के माँ अपन ने क्या करना है एक छप्पर या स्थाई शेड बनाना है। शेड की लंबाई चौड़ाई वर्मी टैंक की संख्या पर निर्भर करे किसान भाइयों और वर्मी टैंक की मानक साइज 1 मीटर चौड़ो, आधा मीटर गहरो और 10 मीटर लंबो। 10 मीटर लंबो वर्मी कंपोस्ट बनाने के वास्ते सामग्री के रूप में वनस्पतिक कचरों जिया के कृषि अवशेष जलकुंभी केला और बबूल की पत्तियां या अन्य हरी और सूखी पत्तियां पेड़ांगी हरी शाखावां बिना फूली घास सड़ी गली सब्जियां फल घरेलू कचरों और पशुओं को गोबर अन्य उपयोग में लिया जा सके। किसान भाइयों वर्मी टैंक में अधपका नमी युक्त वनस्पतिक कचरे की 6 इंच की तह लगा दे वहाँ पा जे कचरों अधपक्यो नहीं है तो बिंग वहाँ गोबर को घोल मिला के 15 दिन तक सड़ा सका आपा ताकि इंगमा सड़ने पर बढ़ने वाली गर्मी ने समाप्त कर जा सके और इस 6 इंच की परत पर लगभग 6 इंच तक पकड़ो गोबर जो है वो अपन गिरना पड़ेगा और इन गोबर की तय पर 500 से 1000 केंचुआ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से छोड़ी जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग के वास्ते केंचुआ की सर्वाधिक उपयुक्त प्रजातियां आइसिनिया फर्टिडा यूड्रिलस यूजिनी और परियोनिक्स एक्सावेट्स है। ई तरिया 1 फीट ऊंची अध सिड़े और बारीक वनस्पतिक कचरे की तय लगा दी जाए और ई तरिया ढेर की ऊंचाई 2 से 3 फुट तक आपा कर देवा। अब ई डोम के आकार के ढेर ने जूट के बोरा से ढक देवा। शेड का मसदा अंधेरों बने रहना चाहिए क्योंकि अंधेरे में केंचुआ ज्यादा सक्रिय रहे। किसान भाइयों इन वास्ते शेड के चारों ओर घास फूस या बोरा लगा देना चाहिए। बोरा के ऊपर नियमित रूप से जरूरत के अनुसार पानी को छिड़काव भी करता रहना चाहिए ताकि टैंक में नमी बनी रहे। टैंक के ढेर ने लगभग 25 से 30 दिन के बाद हाथा में या लोहे के पंजे की सहायता से धीरे धीरे पलटाता रहे आपा जगह वायु को संचार और ढेर को तापमान भी ठीक बने रहे। आ क्रिया 2 से 3 बारी दोहराई जाए। टैंक के अंदर को तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और नमी 30 से 35% होनी चाहिए। पानी के उचित प्रयोग से तापमान और नमी ने नियंत्रित करियो जा सके। किसान भाइयों मानक साइज के टैंक के वास्ते प्रतिदिन यानी रोजाना लगभग 30 से 90 लीटर पानी की जरूरत पड़े। लगभग 60 से 75 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए। ई टाइम ढेर के मां चाय की पत्ती के समान केंचुए के द्वारा निकाली गई कास्टिंग दिखाई देने लग जाएगी और ये खाद निकाल के अरिन पॉलीथीन शीट पर रखियो जाए। 2-3 घंटा बाद के मां केंचुआ पॉलीथीन की सतह पर आ जाए। वर्मी कंपोस्ट के अलग इकट्ठा होड़ा केंचुआ ने दोबारा वर्मी कंपोस्ट बनाने के वास्ते काम में लिया जा सके और ये खाद ने 6 में सुखा के नमी कम कर लेवा बिना बोरी में भर गए 8 से 12% नमी में 1 साल तक भंडारण भी कर सका आप। तो किसान भाइयों इन तरिया से वर्मी कंपोस्ट आपने तैयार करनी है। किसान भाइयों 1 किलोग्राम वजन में लगभग 1000 प्रोड केंचुआ हुए और 1 दिन के मां 1 किलोग्राम प्रोड केंचुआ लगभग 5 किलोग्राम कचरे ने खाद के मां बदल देवे। बताई गई विधि से मात्र 60 से 75 दिन में 100 × 1 × 0.5 मीटर टैंक लगभग 5 से 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए जगह के वास्ते लगभग 10 से 12 क्विंटल कच्चो पदार्थ

0: इंगमा लग गए। अब किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट को गोबर की खाद और कंपोस्ट तुलनात्मक अध्ययन की बात करें आप तो बहुत ही ज्यादा कामगी हुए या और बहुत ही ज्यादा कीमती मानी जाए। इंगमा सब तरह का पोषक तत्व जो कहे तैयार हुए जी यहाँ के तैयार होने में लागण वाली अवधि गोबर की खाद में 6 महीना लग जाए, कंपोस्ट खाद में 4 महीना लगे और वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ 2 महीना लगे। पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें नाइट्रोजन गोबर की खाद के मां 0.3 लेगे 0.5%, कंपोस्ट खाद में 0.5 लेगे 1% और वर्मी कंपोस्ट में 1.2 लेगे 1.6% नाइट्रोजन यानी कि सबसे ज्यादा इंगमा नाइट्रोजन पाई जाए। फास्फोरस भी इन त्रियाशियों वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा हुए और पोटाश की मात्रा भी ज्यादा हुए। तो यहाँ कह सकें किसान भाइयों के वर्मी कंपोस्ट अगर आप तैयार करके इस्तेमाल करा तो बहुत ही बढ़िया बात रही है, अपनी खेती के वास्ते ज्यादा उपयुक्त मानी जाए। अब किसान भाइयों जी यहाँ बात करा के वर्मी कंपोस्ट या अन्य कार्बनिक खाद या गोबर की खाद की तुलना में सारनों उत्तम मानी जाइए और मृदा संरचना ने सुधारने में प्रबल घटक के रूप में भी वर्मी कंपोस्ट आपको काम करे। अब वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करने का लाभ की बात करा, वर्मी कंपोस्ट माटी के मां कार्बनिक पदार्थ की बढ़ोतरी करे और जमीन के मां जैविक क्रियावान ने निरंतर प्रदान करते रहे। वर्मी कंपोस्ट को जमीन के मां प्रयोग करने से भूमि भुरभुरी और उपजाऊ बन जाए। वर्मी कंपोस्ट खेत के मां दीमक और अन्य नुकसान करने वाले जीवाणुओं ने नष्ट कर देवे, इन से कीटनाशक की लागत में भी कमी आ जाए। किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खरपतवार की समस्या पर नियंत्रण हो जाए और मजदूरी की लागत में भी कमी आ जाए। वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल के बाद 2-3 फसलों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहे। भूमि के मां केंचुआ की सक्रियता से पौधा की जड़ों के वास्ते उचित वातावरण बने जगह से वांगो अच्छो विकास हो जाए। इनके अलावा लाभ की बात करें तो इन मां पौधा का आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर और संतुलित मात्रा में पाए जाए। किसान भाइयों इंगे सागे ही उपयोग से भूमि भुरभुरी हो जाए और जमीन में पोषक तत्व और जल संरक्षण की क्षमता बढ़ जाए और हवा को आवागमन भी ठीक बनो रहे। इंगे प्रयोग से जमीन में लाभप्रद सूक्ष्म जीवाणुओं जिया नत्रजन फास्फोरस फिक्सिंग जीवाणु प्रोटोजोआ फफूंद आंगी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए जबकि पौधा की भूमि में उपलब्ध भोज्य पदार्थ ने सरल रूप से उपलब्ध करा देवे। केंचुआ खाद कचरों गोबर और फसल अवशेष से तैयार करी जाए जी से गंदगी में कमी हो जाए और पर्यावरण सुरक्षित रहे। वर्मी कंपोस्ट में दूसरी खादों की तुलना में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाए जिसके कारण दूसरी खादों की तुलना में इनकी कम मात्रा ही काम में आवे। वर्मी कंपोस्ट में नत्रजन की मात्रा 1-5%, फास्फोरस 1-1.5% और पोटास 1.5-2% तक पोषक तत्व में पाया जाए। किसान भाइयों केंचुआ के विष्टा में पेरीट्रपिक झिल्ली हुए जबकि जमीन में धूल कणा से चिपक गिर जमीन में वाष्पीकरण ने रोके। वर्मी कंपोस्ट पूर्ण रूप से पर्यावरण मित्र विधि है जबकि रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में ऊर्जा के उपयोग से लेकर इस्तेमाल तक हर स्तर पर प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाए। अब किसान भाइयों बात करा कि वर्मी कंपोस्ट बनावता टाइम रखी जाने वाली सावधानियां तो वह इतरियां हैं कि वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के वास्ते गाय गोबर सबसे उत्तम मानी जाए पर कभी भी आग का पत्ता या दतूरे का पत्ता इस मिश्रण में नहीं गिरना चाहिए नहीं तो इन्हें जहरीले प्रभाव से केचुआ मर सके। वर्मी कंपोस्ट को शेड छायादार जगह पर ही बनाया जाना चाहिए, बेड पर अंधेरों बनाए रखना चाहिए क्योंकि केंचुआ अंधेरे में ज्यादा क्रियाशील हुए। सड़ेड़े गलेड़े कार्बनिक पदार्थ पर गोबर ने अच्छी तरह मिलाना चाहिए ताकि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात संतुलित रहे। कभी भी ताजा गोबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसान भाइयों क्योंकि इसे निकलने वाली गर्मी गैस से केंचुआ मर सके और दीमक को आक्रमण हो सके। इस प्रकार गोबर 10-15 दिन पुराना होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बेड को तापमान 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड और नमी 30-35% तक बनाए रखनी चाहिए। कठोर डालियां को प्रयोग नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। खरपतवार अवशेष ने भी फूल आने से पहले ही काम में ले लेना चाहिए। खरपतवार और कूड़े कचरे में प्लास्टिक कांच या पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बेड गए तैयार कर लेने पर 5-6 दिन बाद में ही केंचुआ छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जे छिड़काव दौरान गड्ढे में पानी ज्यादा हो गया तो गड्ढो पक्को होने के कारण रिसे को कोनी और केंचुआ मर सके। गड्ढा ने चींटियां कीड़ा मकोड़ा मुर्गियां कौवा पक्षियां से भी सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन तरह से किसान भाइयों आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करा और इनका लाभ जान के आप खेती में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करा। पर अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: प्रगतिशील किसान भाइयों ने अभी जानकारी सुनी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के तरीके और उसके होने वाले लाभों के बारे में। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 928 किलोहर्ट्ज़ पर।

प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रस्तुत है नियमित कार्यक्रम मानस का। गोस्वामी तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस पर आधारित इस कार्यक्रम में इन दिनों सुंदरकांड का सेस्वर पाठ प्रसारित किया जा रहा है। आज प्रस्तुत है भाग 299, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का।

अरे मूर्ख, वाक विलासिता से अपने मन को बहलाकर अपने कुल का सर्वनाश न कर। श्री राम के विरोधी की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण के पत्र में लिखा ये संदेश सुनकर रावण भयभीत हुआ, किंतु सभासदों को दिखाने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, पृथ्वी पर खड़ा ये तुच्छ तपस्वी आकाश पकड़ने की डींग मार रहा है। दूत शुक ने रावण को समझाने की भरसक चेष्टा की, श्री राम से वैर न करने की प्रार्थना की, ये भी विश्वास दिलाना चाहा कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, शरणागत पर वो कृपा करते हैं, वे आपके अपराध भी क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, जनक नंदिनी उन्हें लौटा दीजिए, मेरी इतनी विनती मान लीजिए। शुक को इस अनुनय के लिए रावण ने लात मारी और अपशब्दों की बौछार के साथ उसे सभा से निकाल दिया। इधर 3 दिनों की अवधि बीत जाने पर भी जब समुद्र ने पार जाने देने की विनती नहीं मानी तो श्री राम को क्रोध हो आया। उन्होंने अग्निबाण संधान किया जिससे सागर के हृदय में भीषण ज्वाला धधक उठी। सागर ब्राह्मण का रूप धारण कर मस्तक झुकाए आ खड़ा हुआ।

ये था मानस गान कार्यक्रम। सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में आपने सुना श्री रामचरित मानस में से सुंदरकांड। आज था भाग 299। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम इस केंद्र से प्रत्येक सुबह 7:30 बजे प्रसारित किया जाता है। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव पर 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज़।

सुप्रभात के सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक की जानिब से श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं। ये युगल गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में योगेश की गीत रचना है, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है बातों बातों में। जैसा कि फिल्म का नाम है बातों बातों में, बातों बातों में बहुत सी बातें बन जाती है, लेकिन अगर बातें ढंग से न की जाएं तो बात बिगड़ भी जाती है। बात करना, बात कहना, बात सुनना अपने आप में एक कला है।

जैसा कि फिल्म का नाम है बातों बातों में, बातों बातों में बहुत सी बातें बन जाती है, लेकिन अगर बातें ढंग से न की जाएं तो बात बिगड़ भी जाती है। बात करना, बात कहना, बात सुनना अपने आप में एक कला है। जीवन में अगर आपसे संवाद न हो तो जीवन नीरस हो जाता है। संभवतः मनुष्य ने इसीलिए समाज में, परिवार में, घर में रहना शुरू किया। अगर उसे एकाकी जीवन पसंद आता तो शायद वो कहीं जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर, पेड़ों पर रह लेता। लेकिन उसे लगा कि मुझे बातचीत करनी चाहिए, इसलिए उसने अपने लिए मित्र बनाने शुरू किए, दोस्त बनाने शुरू किए, बात करनी शुरू की, भाषा का विकास हुआ। और यह जरूरी भी है, इतना लंबा जीवन, लगभग 70, 80, 100 बरस तक की जिंदगी सामान्यतः, और उसमें कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो जीवन बड़ा नीरस हो जाता है। हमें चाहिए कि हम आपसी संवाद से जीवन को खुशहाल करें। यदि कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उन सबको आपसी संवाद के जरिए बैठ करके सुलझाया जा सकता है। आपसी संवाद करने से न सिर्फ हमें यह पता लगता है कि जीवन में कहाँ क्या चल रहा है, बल्कि आपसी संवाद के माध्यम से हम अपनी खुद की परेशानियों को, अपनी मनोदशा को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं, और सामने वाले व्यक्ति से सकारात्मक सुझाव प्राप्त करके समस्या के निदान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। संवाद बेहद जरूरी है। बहुत सी बार ऐसा भी सुनने में आता है कि सिर्फ संवादहीनता की वजह से यह अपराध घटित हुआ। अक्सर जो संबंध विच्छेद और इस तरह के दर्दनाक अंत वाली कहानियां होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति देखी जाती है। संवाद के माध्यम से बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। मन में चलने वाली भीषण उहापोह की स्थिति को संवाद के माध्यम से दूर किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने परिवार के प्रति, अपने परिजनों के प्रति मोह के चलते थक चुका था, हार चुका था, हताश हो चुका था, ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से उसे समझाया और उस समय जो संवाद स्थापित किया, उससे अर्जुन में एक नई जान फूंकी गई और उसने युद्धभूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। संवाद के माध्यम से किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। संवादहीनता बेहद खतरनाक स्थिति है, इससे बचें। अपने मन की बात अपने किसी भी साथी को, अपने विश्वसनीय पात्र व्यक्ति को कह देनी चाहिए। हाँ, बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के साथ आप संवाद स्थापित कर रहे हैं, वह चुगलखोर तो नहीं, वह आपकी बात को जाकर के बाहर ढिंढोरा तो नहीं पीट देगा, कहीं सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ तो नहीं लगा लेगा। जब पात्र व्यक्ति आपको मिले तो उसके साथ संवाद अवश्य स्थापित करें। कुछ पीड़ित लोग होते हैं समाज में, उनकी जो दीनता हीनता की स्थिति है वह सिर्फ इसीलिए हो जाती है कि उन्होंने किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित नहीं किया। यदि इस तरह का कोई पीड़ित व्यक्ति मिले तो उसके मन की बात को सुने, संभवतः वह आपको अपनी बात कह करके हल्का हो सकता है और शायद वो उस

0: अवस्था से बाहर निकल करके आकर के सामान्य जीवन जीने लगे। संवाद स्थापित करें, बेहतर संवाद स्थापित करें, क्योंकि अच्छा संवाद व्यक्ति का दिन अच्छा बना देता है।
1: कहिए ना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोतो, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बातचीत की, आपसे संवाद की। आपसे संवाद का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति, दो लोग, दो पक्ष बैठ कर के बातचीत करते हैं। बातचीत का पहलू कुछ इस तरह से रहता है कि एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है। अब इसमें बोलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके साथ ही किसी भी व्यक्ति का अच्छा श्रोता होना उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सबसे पहली बात कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कहना चाहता है, यदि हम उसे अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो वो हमारी समझ में आएगी। दूसरी बात, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बेहद जरूरी है। जब हम एक अच्छे श्रोता के रूप में किसी व्यक्ति को सुनते हैं, तो उसके विचारों का हमारे अंदर अच्छे से प्रवेश हो जाता है, हम उन्हें जान सकते हैं। दूसरी बात कि यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वह भी एक अच्छे श्रोता द्वारा ही संभव है। यदि हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ गौर न करने की वजह से स्किप हो जाती हैं, बीच में से निकल जाती हैं। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो बोलने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है, उसे महसूस होता है कि कोई है जो अच्छे से सुनता है, और सुनकर आप बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं, बहुत सी गलतियों को पकड़ सकते हैं। इसलिए अच्छे श्रोता बने, फिर अच्छे वक्ता बने।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे हैं। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

श्रोतो, आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं कमल पारीक आज आपके साथ हूँ। प्रोग्राम सुप्रभात इस समय जारी है। श्रोतो, बात करते हैं बालिका शिक्षा की। ये जो नन्ही नन्ही बालिकाएं बच्चियां होती हैं, बड़ी सुकोमल सी, बड़ी प्यारी सी जब तुतला करके बोलती हैं, तो आदमी के तन का मन का जहनी तौर पर जो भी दिक्कत परेशानी होती है, टेंशन तनाव होता है, दूर हो जाता है। जब आप घर पहुंचते हैं, जाते ही आपके हाथ से छोटी बिटिया आकर के अपने लिए कोई चीज तलाशती है, तो आप सारी फिक्र भूल जाते हैं और बड़े प्यार से अपनी बेटी को गोद में उठा करके जब उसे चूमते हैं, तो मानो संसार की सारी खुशियाँ उस पल आपके हाथों में मौजूद होती हैं। परमात्मा सभी बेटियों को सुखी रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। हम उन सभी बालिकाओं को जिनका जन्मदिवस है, उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। उन सभी बालिकाओं को वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हैं जिनका विवाह आज के दिन हुआ था। उन सभी बच्चियों को हमारी तरफ से मंगल कामना।

जिन्होंने एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना कारोबार स्थापित किया है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जिन्होंने देना शुरू की हैं। हमारी तरफ से सलाम पहुँचे, हमारी शुभकामनाएं पहुँचे उन सभी बालिकाओं के नाम जिन्होंने हाल ही में कोई परीक्षा दी है और सफलता हासिल की है।

श्रुतो, इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जो धन दौलत आप कमाएंगे वो यहीं रह जाएगी, जो नाम इज्जत पैसा शोहरत, जो चल चल संपत्ति आपके पुत्र पौत्रादि, सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर किसके लिए यह मारकाट, इतनी धमाचौकड़ी? थोड़ा सा विश्राम कर लें, ठहर जाएं, ठहर करके रुक करके मोहब्बत कर लें, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, सत्य है, प्रेम सुंदर है, प्रेम सत्य है, और जो सत्य सुंदर होता है वही शिव होता है। क्यों न शिवमय हो जाए, मोहब्बत बांटे, मोहब्बत करें।

अपने माशूक से मैं इश्क का इशार कर लूँ, मेरी आवाज़ जो दहलीज समा तक पहुँचे, जब मुफक्किर मेरे अंदाजे बयां तक पहुँचे, मेरी हालत मेरे हर राजे निहां तक पहुँचे, अपने दिल के किसी गोशे में हमें रहने दे, बड़ी मुश्किल से मेरी जान यहाँ तक पहुँचे, तिफल बाकी न रहे पीरो जमा तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजते हैं, अब समाचार होंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया

0: की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
1: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जल

0: भू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy.

0: Energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of

0: ही की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लामरकज़ी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराहे रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराहे रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कद्र 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके ख़ानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमा बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इम्तिहान मुनक़द कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनक़द किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisir.net.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप छमाही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ज़ेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिला। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से ख़त्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अब नए हुर्मुज में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका के ताज़ा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज़्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्नब पारकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फ़ोन पर बात करके मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा ख़त्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फ़ौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया आज 1 रोज़ा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज़ फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है, सुगम संगीत कार्यक्रम सुने।

0: सुगम संगीत आपने सुना। ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजते हैं, प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। कहा, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के माध्यम के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना और

0: देश में मॉनसून के अगले 2-3 दिन सक्रिय रहने के आसार, आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: सीईओ फोरम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रोडमैप व्यापार कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों पक्षों के 200 से अधिक सीईओ उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए अनेक नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से मुकंदरा वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा 4-लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा से इटावा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेसवे होगा। कोटा में आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास का आधार बनेगा।
2: ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहां का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड समारोह में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और स्वस्थ फसलों का उत्पादन संभव होगा। राज्यपाल ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला है और बड़ी आबादी की आजीविका इससे जुड़ी है। उन्होंने कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों तथा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की बड़ी उपलब्धि है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राज्य सरकार और ISA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण और वितरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे बिजली की मांग का बेहतर आकलन और उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में

0: ये आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। जयपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की गई है। इसके लिए झालाना में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्टेशन शहर में कचरा संग्रहण, प्रबंधन और परिवहन को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा।
1: वो टेम्पो यहाँ कर कचरे खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ से बड़े वाहन में लगकर वो प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा, जिसमें से हमारे यहाँ दहलवास प्लांट में जिस प्रकार हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ जगह गैस उत्पन्न करने का विचार है और कुछ जगह अब एक नई तकनीकी हो रही है कि उस कचरे को भी रिसाइकल करे, किसी न किसी प्रकार का कोई उपयोगी सामान निर्मित किया जाए।
0: कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर में पांचना बांध और नहरी जल प्रवाह को लेकर किसानों और आमजन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। डॉक्टर मीणा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक और भड़काऊ संदेशों से सावधान रहने तथा केवल प्रशासन की अधिकृत सूचनाओं पर विश्वास करने का आग्रह किया है।
2: मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, हिंसा किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है, इसलिए हिंसा का सहारा नहीं लें और सोशल मीडिया पर जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तो विशेषकर कमांड एरिया के किसानों को मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूं, सभी किसानों में कोई भेद नहीं करना चाहता।
0: मॉनसून के प्रदेश में अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार हैं। 11 जुलाई से एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। आज कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है, कहीं कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर और झालावाड़ में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और फलौदी को छोड़कर सभी जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। इस बीच पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 22.9 मिलीमीटर बरसात उदयपुर के डबोक में रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना लिस्ट जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। कहा, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। और प्रदेश में मॉनसून के अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार। आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9:10 हुए हैं। राजधानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने मरुमंगल। कलाकार हैं पेमाराम।

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 और ठीक 30 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को आप सुन रहे हैं। गुलजार का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम आंधी।

लता और किशोर को आपने सुना है आधी फिल्म के लिए? श्रोताओ, आज 9 जुलाई है। 9 जुलाई 1938 का दिन जेठालाल जरीवाला, जो कि सूरत गुजरात में रहते थे, उनके घर आज ही के दिन 9 जुलाई 1938 को पैदा हुए हरी भाई नाम रखा गया बालक का। और इस बच्चे ने आगे चल कर के फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। आपको याद होगा, शोले फिल्म में ठाकुर की भूमिका में जो अभिनेता थे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार की। दुनिया ने जिन्हें संजीव कुमार के नाम से जाना, छह नवंबर 1985 तक हमारे साथ रहे, मात्र 47 साल इस धरती पर इनका जीवन रहा, लेकिन अनेक फिल्में संजीव कुमार ने अपने अभिनय से जिंदा की। इनमें से कुछ थी प्रोफेसर की पड़ोसन, राही, कत्ल, कांच की दीवार, लमेट गोड, हाथों की लकीरें, बात बन जाए, राम तेरे कितने नाम, जबरदस्त, लाखों की बात, पाखंडी, यादगार, हीरो, अंगूर। अंगूर फिल्म से हमें याद आया कि अगर आपको हंसी मजाक की फिल्म देखनी हो तो अंगूर जरूर देखें। सवाल, सुराग, हथकड़ी, अय्याश, खुद्दार, लोग क्या कहेंगे, नमकीन, श्रीमान श्रीमती, सिंदूर बने ज्वाला, विधाता, दासी, इतनी सी बात, बीवीओ बीवी, चेहरे पे चेहरा, सिलसिला, हम पांच, ज्योति बने ज्वाला, अब्दुल्ला, बेरहम, फौजी चाचा, पत्थर से टक्कर, स्वयंवर, न जाने कितनी फिल्में। और इस तरह से चलते हुए पति पत्नी, वो सावन के गीत, तृष्णा, तुम्हारे लिए, शतरंज के खिलाड़ी, आलाप, अंगारे, पापी, विश्वासघात, अर्जुन पंडित, दो लड़कियां, मौसम, फरार, शोले, आक्रमण, आंधी, अपने रंग हजार, धोती, लोटा और चौपाटी, मनोरंजन, चरित्रहीन, दावत, ईमान, नया दिन नई रात, शानदार, अनहोनी, अनामिका, कोशिश, रिवाज, सबसे बड़ा सुख, सीता और गीता, कंगन, मन मंदिर, पारस, बचपन, दस्तक, देवी, इंसाफ का मंदिर, जीने की राह, राजा और रंक, साथी, हुस्न और इश्क, बादल, काल्पी, स्मगलर, पति पत्नी। इस तरह से अनेक फिल्में, एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है जिन फिल्मों से संजीव कुमार ने उनको अदा किए गए किरदार को बखूबी निभाया। आज हम अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हीं की फिल्मों से कुछ दो गाने सुनवा करके। प्रोग्राम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर के साथ भूपेंद्र कुमार की आवाज, गुलजार का लिखा गाना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम मौसम।

0: श्रोताओं, संजीव कुमार के बारे में हम आपको बताते चलें कि उन्होंने नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे।
1: बैठे रहे
0: है ना हैरानी की बात। इस समय आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज़ पर, और मैं कमल पारीक आपका अपना रेडियो दोस्त आज आपके साथ हूँ। इस केंद्र की खासियत है कि हम आपको आपके मनोरंजन की फुल गारंटी देते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं संजीव कुमार पर अभिनीत कुछ फिल्मी गीत फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। अब सुनिए अनजान का लिखा गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कंकन।

संजीव कुमार द्वारा अभिनीत एक शानदार फिल्म थी कोशिश। इस फिल्म में उन्होंने गूंगे और बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया। कभी अवसर मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। संजीव कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो वे आजीवन कुंवारे रहे और सिर्फ 47 साल की उम्र उन्होंने पाई। 1985 का वो साल 6 नवंबर का दिन सिर्फ 47 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से इस महान अभिनेता का देहावसान हो गया। लगभग 25 साल तक वे सक्रिय रहे फिल्मों में। उनके विशिष्ट अभिनय और आमजन के साथ शिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हीं पर फिल्माए कुछ युगल गीत हम उनको अकीदत के फूलों के रूप में समर्पित करते हैं।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समय मिला ले सुबह के ठीक 10:15। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

ये मीठी सी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साजों से निकली। गीत रचना आनंद बख्शी की, आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। फिल्म का नाम एक दूजे के लिए।

प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी, फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। सुनने के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे साथी हैं सिद्धार्थ नगर दुर्गापुर बाबली से, गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक और इनके परिवार के लोग, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता और गौरव सैनी, कंवर कॉलोनी खंडवा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता प्रवीण शिवाली और मीना इनके साथ हैं, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, संगरिया से श्याम मिठा और सुमन मिठा, श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप, चिमनलाल, आप सब ने फरमाइश भेजी मंडी केसरी सिंहपुर से, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और उनके बहुत से साथी, सतीश श्रीवास्तव के साथ फरमाइश भेजने वाले हैं श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक, आप सब ने कवाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान से अपनी फरमाइश लिख करके भेजी है। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष राजश्री गौरव, संगरिया से गोवर्धन दास और कृष्णा देवी, रामपुरा मटोरिया ढाणी से मुरारीलाल शर्मा और इनके परिवार के साथी, सुधाकर जाधव और इनके साथ हैं कुमार प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत देशमुख, सानवी, कल्पना, आप सबने फरमाइश भेजी कालेगांव जाफराबाद से। अब हम आपको सुनवाते हैं हेमलता की आवाज, रविंद्र जैन का लिखा हुआ गाना और उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ, और ये टाइटल सॉन्ग हमने लिया है, फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

मुजफ्फरपुर से रेणु शर्मा, भूपेंद्र मिशन प्रभजोत, जानवी का, महावीर बिनावरा, प्रेरणा दिव्यांशु और सूर्यांश सूरतगढ़ से, रोवर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दीपेश वर्मा और पूनम इनके साथ हैं, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, नीति, प्रवनीत, विक्रमजीत और इनके तमाम दूसरे साथी, चक 15 PS से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर, गुरमन सिंह, आदर्श पाल, रोबिन सिंह, कुलदीप और विचित्र सिंह। हनुमानगढ़ से फरमाइश हमारे पास पहुंची है रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान इरफान और जीशान खान की। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और उनके साथ हैं गीता। बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता साथी हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज और अनवर मास्टर, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग पूना राम और कृष्णा देवांगन ने पलारी छत्तीसगढ़ से हम तक अपनी फरमाइश लिख करके भेजी है। चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज वीरक और उनके बहुत से साथी, विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सन्नी, राकेश कुमार और उनके बहुत से साथी। आपके साथ हैं हमारे साथी खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र, मूसा भाईजानू, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी रोहित, रितु मुकेश और जगताप। आप सभी ने सुनना चाहा लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर को, गीत संतोष आनंद का, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम प्यासा सावन।

जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। मनीष श्रीवास्तव के साथ हैं हर्षिता लाली श्रीवास्तव और इनके परिवार के दूसरे लोग। भोपाल से हमें फरमाइश लिख करके भेजते हैं ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के साथ ही।

सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक, चंडीगढ़ से सतीश और बिमला आनेजा, सुल्तान सिंह तड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र कपिल देव और हिमानी जाखड़ ने हमें नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश लिख करके भेजी है। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश बगड़िया, इनके साथ हैं रजत और बेबी करीमा बगड़िया। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, कुलविंदर कौर, हरविंदर, राज सिंह और इनके मान परिवार के दूसरे सारे साथी गण। गांव जाखूद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला, अमरजीत सुंदर, योगेश दीपक और कुमारी पूजा खटक ने हमें अपनी पसंद लिख करके भेजी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टुबूल और पी बी कुलथे ने हमें फरमाइश भेजी है। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड के श्रोता निसार सलमानी, नौशाद बेबी, आलिया, आयान बाबू और इनके बहुत से साथी हैं। हरदोई से रजनी सिंह चौहान, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा शाहू, लीना शर्मा, कविता, मोनिका, मधुलता पुरोहित, प्रियंका, नीलम, चरणजीत कौर और इनके बहुत सी सखियां हैं। इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा लेकिन फरमाइश हम तक भेजी है। आप सभी ने सुनना चाहा खयाम के संगीत निर्देशन में आशा भोसले का गाया गाना शहरयार का लिखा हुआ ये नगमा है उमराव जान फिल्म से।

0: कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम तक पहुंची है इंदौर से सरोज तिवारी की, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां मास्टर अजहर और अजीम खान, कुछ और श्रोता साथी हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले क्यों न ये गाना सुन लिया जाए। और उस गाने से पहले भी एक जरूरी संदेश है, वो हम आपको सुनवाते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये गाना है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की, संगीत शंकर जयकिशन का, और फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। इस गाने को सुनने के लिए हमारे पास कुछ और फरमाइशें हैं जो हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं। तहसील भादरा अनूपशहर से गजानंद सारस्वत, तारा चंद, सोनू पवन, साहिल राघव, मुरारी, ममता, मीतू, कीनू, मदन लाल, फूसा राम, महावीर लोहरा, अमित शर्मा। अमित शर्मा ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये फरमाइश लिख करके भेजी है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल, मगन लाल सोमानी, बिंता, मुंशी राम, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा। फाजिलका रोड मलोट से कुलवंत गिल, जसवंत, रमन, बलजीत, दिशा और जुगतार जग्गा। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। गांव अरायण, तहसील श्री कर्णपुर, जिला श्री गंगानगर से बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। आप सभी ने सुनना चाहा मेरे हुजूर फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर को सुने। फिल्म का नाम हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ श्रोताओं के नाम आप सुन लें जिन्होंने ये गीत सुनना चाहा। गांव बनवाला हनवंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायन, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनका पूरा परिवार। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। साधु शहर से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। अम्भई तालुका सिल्लोड, जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के श्रोता अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी और गायत्री के साथ हैं यज्ञेश। बठिंडा रोड मणि डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी ने नवा शहर गांव टोरोवाल पंजाब से हमें अपनी फरमाइश लिख करके भेजी है। मोल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से श्रोता साथी मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कोसर ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर को। इसी गीत के लिए हमारे ख्वाहिशमंद श्रोता हैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, अनस और रेहान। इनके साथ हैं सबीहा। आइए आप सुने धनवान फिल्म का ये गाना।

राजकोट से जेमिन कुमार हेतल, कृष्णा और राकेश जैन। गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, सायना, विष्णु और इवा धारणिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। आप सब ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपना पसंदीदा नगमा हम तक भेजा। बुलढाणा बड़छिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक। फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद, सौरभ, बिल्लू सूद, सुनीता, आशीष, चांदनी, विश्वजीत। मंडी केसरी सिंहपुर से, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, बाबू भाई चांदीवाला और इनके बहुत से साथी। दतरंगी भाटापारा के हमारे नियमित श्रोता हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखे लाल। मिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया ने झज्जर हरियाणा से फरमाइश लिख करके भेजी। रेणु शर्मा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हमारी श्रोता हैं। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक, सचिन, रोहित और इनके बहुत से साथी। प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ हागोड़े। आपने हमें कुष्टा बुजुर्ग अमरावती से अपनी पसंद के बारे में अवगत करवाया। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, लाड़ो कोयल और नानक चंद जी हैं। नानी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इरमान, विनोद, सोहिल, जुनेद, मुखराम, आरिफ, या अरशद, अरमान, उनके बहुत से साथी। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत और रेहान शेख ने सांगली जत शहर से अपनी फरमाइश लिख करके भेजी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र के श्रोता गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी, राजेश और राकेश, इनके साथ हैं आशा नारंग और सोनाली और सुरेश सहारनपुर से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी, ओम और इनके बहुत से साथी। गांव थूप, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर से श्री राम जानी, गर्वित और उनके बहुत से साथी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूलाल जयपाल, उमंग सिंह भाटी, दिनेश चौहान। गांव दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और इनके बहुत से साथी हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से मानसा से जगदीश राय गर्ग,

मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी ने बस्ती गंज डुंडवारा से हमें फरमाइश लिख करके भेजी। खंडवा से संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, हितेंद्र दास असम के हमारे श्रोता हैं, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश, लखुवली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल राजबाला, ममता लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम और इनके बहुत से साथी। 19 जीडी घड़साना से गुरतेज औलक, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद दयान और मोहम्मद उस्मान, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, गंज डुंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिश, दानिश और अमन, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका और राजू प्रजापत। आप सभी ने सुनना चाहा लता मंगेशकर को, शैलेंद्र का लिखा गाना, धुन शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम राजकुमार।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम अनुरोध गीत सुन रहे थे कमल पारिक के साथ। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। फिल्मी गीतों का ये सिलसिला जारी है फिल्म संगीत के तहत।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, गीत के बोल नीरज के थे, धुन एसडी बर्मन ने तैयार की थी। प्रोग्राम की अगली पेशकश मजरू का गीत, ओपी नैयर का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और फिल्म है मेरे सनम।

तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत एस डी बर्मन का, और फिल्म है इश्क पर जोर नहीं।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म थी रजनीगंधा। गीत के बोल योगेश के थे और संगीत सलील चौधरी ने तैयार किया था। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश साहिर का गीत, जयदेव का संगीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, और फिल्म का नाम है हम दोनों।

श्रोताओं, लता मंगेशकर को भी आपने सुना, फिल्म थी ममता। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और सुरों से सजाया था रोशन ने। फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया ये गीत। गीत के बोल हसरत के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का, और फिल्म का नाम है रात और दिन।

शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आपने सुना, जिसे शुरू से सजाया था शंकर जयकिशन ने, आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने, और इस गीत को हमने फिल्म आम्रपाली से लिया था। निजी साहिर का लिखा गीत सुनिए, संगीत रोशन का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम है ताजमहल।

श्रोतों, ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म थी मधुमती। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन तैयार की थी सलील चौधरी ने। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, गीत SH बिहारी का, संगीत OP नैयर का और फिल्म है कश्मीर की कली।

प्रोफेसर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए एक बार फिर शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की और इस गीत को हमने फिल्म संगम से लिया है।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर सुगम संगीत सुनिएगा और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विभिन्न कवकनाशी घर पर कैसे तैयार करें। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे आधुनिकता और संस्कार, सर्वाइकल में फायदेमंद योग, मॉड्यूलर किचन कितना उपयोगी, और इसके साथ ही कुछ किचन टिप्स भी दिए जाएंगे। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस और 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा युववाणी। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण व 6:05 पर सिराई की प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय रहेंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, जैविक तरीके से कीट नियंत्रण और मधुमक्खी पालन। इसके अलावा गोपीराम गोदारा का लिखा एक नाटक भी आप सुन सकते हैं, जान। निर्देशन और प्रस्तुति राजेश चड्ढा की रहेगी। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत आप सुन सकते हैं। रात्रि 10 बजे विज्ञान पत्रिका आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले की जाएगी और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। पेश है प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओं, कुछ गीतों और बातों के साथ हम हाजिर हैं। मैं सुमन आज कुछ बातें, कुछ गीत लेकर आपके साथ हूँ। बातें हम करेंगे जिनमें होंगी गुज़रे वक्त की महक, कभी ख्याल की खुशबू, कभी बदन की महक, कभी ख्याल की खुशबू, कभी बदन की महक, हर एक लम्हा हमारे ये चार सू क्या है।

क्या हुस्न, क्या जमाल, क्या रंग रूप है। क्या हुस्न, क्या जमाल, क्या रंग रूप है। वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। और साथियों, जब ऐसा ही कोई शख्स सच्चे जज्बात लिए मेहरबान हो जाए तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। कहा गया है कि प्राणों में यदि पाहुन हो तो नयन बिना भी दर्शन होंगे। नयन यानी आँखें, वो खूबसूरत आँखें जो इस जीवन की आस है।

साथियों, कहा गया है कि मैं पागल मन का प्यार और तुम राजा रूपनगर के, मैं पागल मन का प्यार और तुम राजा रूपनगर के, हम दूर दूर चलकर भी दोनों पंथी एक टगर के। और सच है, दोनों में से एक भी ज़रा दूर हो जाए तो एक अजब सी उदासी दिल को घेर लेती है।

कि सूरज चंदा जैसी जोड़ी हम दोनों, दिन का राजा रात की रानी हम दोनों, एक दूजे से मिलकर पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों।

तुम ख्यालों में ही सही, आवाज़ देकर देखना। घर के बाहर मैं तुम्हें आता हुआ मिल जाऊंगा। सुमन को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

अभी आपने प्रोग्राम सुना कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने कतील शफाई का ये कलाम सुना, और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में इन्हीं आवाज़ों में ये गज़ल सुनिए, जब से हम तबाह हो गए तुम जहां पनाह हो गए।

0: इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है, विभिन्न कवकनाशी घर पर कैसे तैयार करें।
1: किसान भाइयों, फसल उत्पादन में रोगों का प्रकोप किसान भाइयों खातर की एक बड़ी चुनौती बन गई है। धान, कणक, चना, सरसों, सागई सब्जियां और फलांगी फसलों में अनेक प्रकार का फफूंदी जनित रोग लागता रहे। जे टाइम पर आप आएंगे नियंत्रण ना करा तो अपनी फसल को जो उत्पादन है वो 20 से लेके 80% तक कम होने की संभावना बनी रहे। और आज ज़्यादातर किसान भाई रासायनिक कवकनाशियों का उपयोग करें, हालांकि यह प्रभावी तो हुआ है पर अंगी लागत ज़्यादा हुआ है और सागी लगातार उपयोग माटी की गुणवत्ता, पर्यावरण, सागी मानव स्वास्थ्य पर भी किए प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इन खातर आज जैविक और घरेलू स्तर पर तैयार करेड़ा कवकनाशी किसान भाइयों के बीच में तेजी लोकप्रिय होने लग रहा है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप जानेंगा कि घरे आप कम लागत में किसा किसा प्रभावी कवकनाशी तैयार कर सकें और बने बनाने की विधि के है और बंग प्रयोग आप के हिसाब कर सकें। सागे अपने सारों पहला वो जानना जरूरी है कि कवक जनित रोग के हुए। तो किसान भाइयों, कवक या फफूद सूक्ष्म जीव हुए जका कि एक पौधे पर आक्रमण करके अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न करे, जिया झुलसा रोग, चूर्ण फफूदी, डाउनी मिल्ड्यूज, फल सड़न रोग, जड़ गलन रोग, तना गलन रोग और पत्ती दबा रोग। आ रोगों का कारण किए के पौधे की वृद्धि रुक जाए, पत्तियां सूखने लग जाए और फल और दाना की गुणवत्ता भी प्रभावित होए। घरेलू कवकनाशी अपनाने का किसान भाइयों कई लाभ भी है, जी हाँ, अपनी लागत कम हुए, यह पर्यावरण के अनुकूल भी है और सागी माटी का लाभदायक जीव जका है वह यूँ सुरक्षित रहे और फसल में रासायनिक अवशेष कौन रहे। सागी जैविक खेती खातर बहुत उपयोगी है और छोटा जगह किसान भाई है बा खतरा ज़्यादा लाभदायक है। बात करें किसान भाइयों घरेलू कवकनाशियों के बारे में, तो नीम आधारित जगह कवकनाशी है वह भारतीय कृषि को बहुत ही जरूरी आधार है और सागी किए के इन्हें बनान खातर नीम की ताज़ी पत्तियां अपने 5 किलोग्राम लेनी है और पानी जो है वो 10 लीटर लेना है और थोड़ा सो प्राकृतिक साबुन लेना है। इंग बाद आने नीम की पत्तियां अच्छी तरह धो लेनी है और इंग बाद आने पीस के पानी में मिला देनी है। ई मिश्रण न किया 24 घंटा तक आप

की रखना है, कपड़ों पर छान लेना है। अब एक मैं लगभग किया गया 20-30 ग्राम प्राकृतिक साबुन अपना घोल देनी है, जकों किया गया घोल पत्तियां पर अच्छी तरह चिपक सके। इन घोल को 10% घोल बना के सुबह या शाम पौधा पर अपने छिड़काव करना चाहिए। यूँ लाभ हो सी कि अनेक प्रकार का जका फफूंद जनित रोगों का सागर सागर रस चूसने वाला कीटों को भी वो घोल किए के नियंत्रित करते हुए गो। बात करा लहसुन अदरक और मिर्च आधारित कवकनाशी की, तो वो एक अत्यंत प्रभावी जैविक घोल माने जावे। इन्हें बनाने खातर लहसुन अपने 250 ग्राम रखना है, अदरक 250 ग्राम, हरी मिर्च भी 250 ग्राम और पानी जो है वो अपने 5 लीटर लेना है। तीनों ने पीस के पानी में रला देना है, 24 घंटा तक अपन ढक के रखना है, फिर छान के 50 लीटर पानी में मिला के अपन छिड़काव कर देना चाहिए। इंगो लाभ हो रहे सी कि पौधे पर रोग फैलाने वाला कई प्रकार का कवक जगह है बन वो घोल रोकने में सहायक हुए। बात करें किसान भाइयों गौमूत्र आधारित कवकनाशी की, तो आपने जो कि भारतीय खेती है बिंग माँ गौमूत्र का उपयोग लंबे टाइम किसान भाई करता आने लग रहे हैं, और इन्हें बनाने खातर गौमूत्र 10 लीटर, नीम की पत्तियाँ 5 किलोग्राम, धतूरा 2 किलोग्राम, आग की पत्तियाँ 2 किलोग्राम अपन लेनी है और सारी पत्तियाँ ने काट के गौमूत्र में रला देनी है। इन्हें 7 से 10 दिन तक छियाम रखनो है और प्रतिदिन लकड़ियों की है अपन हिलाता रहना है और बाद में इन्हें छान लेना है, और 1 लीटर घोल ने 10 लीटर पानी में मिला के अपन छिड़काव करना है। बात करें छाछ आधारित कवकनाशियों की, तो छाछ में उपस्थित लाभदायक जीवाणु कई प्रकार का रोग ने रोकने में मदद करे। इन्हें बढ़ाने खातर क्या है कि पुरानी खट्टी छाछ 1 लीटर अपन लेनी है और पानी लेना है 10 लीटर, दोनों ने मिला के सुबह शाम फसल पर अपन छिड़काव करना है। इनको लाभ हो सी कि वो विशेष रूप चूर्णी फफूंदी प्रक्रिया के प्रभावी मानी जाए। अब बात करें किसान भाइयों बेकिंग सोडा कवकनाशी की, इन ब्रांड खातर बेकिंग सोडा अपन 10 ग्राम लेना है, पानी 1 लीटर लेना है, प्राकृतिक साबुन जो है वो 5 ग्राम अपन लेना है और सारी सामग्री ने अच्छी तरह अपन घोल लेनी है और हरेक 7 से 10 दिन के अंतराल पर अपन छिड़काव करना है। इनको लाभ हो सी कि पत्ती धब्बा और चूर्णी फफूंदी के नियंत्रण में अब बहुत ही उपयोगी वो घोल मान्य गए। अब बात करें हल्दी आधारित कवकनाशियों की, तो किसान भाइयों हल्दी प्राकृतिक रोगनाशक गुणों भरपूर हुए और इन बनाने खातर हल्दी पाउडर अपने 100 ग्राम लेना है, पानी जो है वो 10 लीटर अपने लेना है और अच्छी तरह ने मिला के छिड़काव करना है और यह कई प्रकार का प्रारंभिक फफूंद रोगों ने फैलने रोकने में क्या सहायक हुए। और घरेलू कवकनाशियों का प्रयोग करता टाइम अपने किसान भाइयों कई प्रकार की सावधानी भी रखनी चाहिए, हमेशा ताज़ा घोल को उपयोग करना है और जो को छिड़काव है या तो वो अपन सुबह करना है या फिर शाम में करना है, दिन में या तेज़ धूप में अपन छिड़काव नहीं करना चाहिए। सागी के है जे बरसात हो रही है तो भी पहला अपन वो छिड़काव कौन करना, छान गई अपन स्प्रे मशीन में इन्हें बढ़ना है, दस्ताना और मास्क को जो को प्रयोग है वो अपन करना है। सागी किए गए रोग नियंत्रण का जगह दूसरा उपाय वह भी अपन किए सागे सागे कर लेना चाहिए। इंगमा रोग मुक्त बीजा को अपन चयन करना चाहिए, खेत में पानी निकासी अपन अच्छी तरह रखनी चाहिए, फसल चक्कर किए अपन अपनाना चाहिए। सागी किए के संतुलित उर्वरक अपन देना चाहिए, न कि देखा देखी में अपन ज़्यादा उर्वरक नहीं देना चाहिए और रोगग्रस्त पौधा ने किए उखाड़ के अपन नष्ट कर देना चाहिए और खेत की नियमित रूपों की अपन निगरानी करनी चाहिए। इन अलावा किसान भाई वो बात करा अपा प्रारंभिक खेती की, तो भारतीय एक के कृषि प्रधान अपनो देश है, 28 की अधिकांश आबादी है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में खेती पर निर्भर है और पिछले कई दशकों में अपन देखा कि खेती में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और आधुनिक तकनीक को ज़्यादा उपयोग हुए पर इनका दुष्परिणाम भी अपने कहने सामने आने लगे है। माटी की उर्वरकता कम होने लग रही है, भूजल भी प्रदूषित हुए है और खेती की लागत भी किए सागे सागे बढ़ी है और किसान भाइयों की आय की है भी पर भी दबाव बढ़े हुए है और दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य पर भी किया गया रासायनिक अवशेषों का प्रभाव अब अपने दिखाई देने लग रहे है। प्राकृतिक खेती किसान भाइयों एक इसी खेती पद्धति है जिसका में किया गया रासायनिक उर्वरक और जहरीला कीटनाशकों का उपयोग को नहीं करी जावे, यूँ किया गया प्रकृति के संतुलन ने बनाए रखते हुए खेती करी जावे और गोबर गौमूत्र फसल अवशेष जैविक खाद जीवामृत बीजामृत और मल्चिंग वर्गी विधियों का उपयोग करके माटी ने उपजाऊ बनाया जावे। किसान भाइयों इन पद्धति का उद्देश्य केवल ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना नहीं है बल्कि

0: माटी, पानी, वायु, पशु पक्षी और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना भी सागे सागे है। प्राकृतिक खेती का जका मुख्य लाभ है, बांगी किसान भाइयों जो आप बात करा तो सारों बड़ो लाभ वो है कि इनमें खेती की लागत कम हो जाए। किसान भाई गोबर, गौमूत्र, पत्तियां और दूसरा स्थानीय संसाधनों खाद और जैविक घोल तैयार कर सके, ऐसी चीज़ें की है कि घर के आस पास अपने मिल जाए। यूँ किया कि रासायनिक खाद और महंगा कीटनाशकों पर होने वाला अपनों खर्चों जो है वो भी बच जाए और सागी रासायनिक खेती के कारण माटी का लाभदायक जगह जीव है वह नष्ट हो जाए। प्राकृतिक खेती माटी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ावे, यूँ केंचुआ, सूक्ष्म जीव और दूसरा लाभकारी जीव सक्रिय रहे, माटी मुलायम, उपजाऊ और लंबे टाइम तक उत्पादन देने योग्य बनी रहे। और किसान भाइयों प्राकृतिक खेती में मल्चिंग को विशेष महत्व है। खेत की स्तह ने सूखी घास या फसल अवशेष ढकण माटी की नमी बनी रहे, इनमें किया कि सिंचाई कम करनी पड़े और सागी पानी की अपनी बचत भी होती रहे। और रासायनिक खेतियों माटी, पानी और वायु प्रदूषित हुए, प्राकृतिक खेती प्रदूषण ने कम करे, यूँ जैव विविधता सुरक्षित रहे और पक्षी, मधुमक्खी या अन्य उपयोगी जीवों की जिसकी संख्या है किसान भाइयों बढ़े। प्राकृतिक खेतियों प्राप्त अनाज, फल, सब्जियां और रासायनिक अवशेष जगह है बाऊबा मुक्त वैर ईशिया खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य खातर भी के ज़्यादा सुरक्षित माने जावे और इनमें शरीर ने बेहतर पोषण भी मिले। तो किसान भाइयों आज को टेमी तो ही देव आ गया, राम राम सा, राम राम।
1: विभिन्न कवकनाशी घर पर कैसे तैयार करें, कार्यक्रम खेत खलिहान में अभी आपने इस विषय पर ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है इससे दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है दोनों देशों ने शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया संयुक्त घोषणा पत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस संबंध में मुख्य सचिव ने जयपुर में समीक्षा बैठक की उन्होंने जर्जर विद्यालय भवनों का निरीक्षण करने तथा मरम्मत निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा मुख्य सचिव ने अधिकारियों से विद्यालयों का फील्ड निरीक्षण कर फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट भेजने की बात कही उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे अधिक वर्षा वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी पर आमजन से सुझाव लेने के लिए जयपुर में कल से संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी दो दिन की ये जनसुनवाई में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में होगी जनसुनवाई के पहले दिन जनप्रतिनिधि विभिन्न धर्मों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अधिवक्ता शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठन सुझाव दे सकेंगे अगले दिन आम नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे सरकार ने सुझाव देने के लिए यूसीसी पोर्टल भी शुरू किया है नागरिक व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्था की ओर से भी अपने सुझाव दे सकते हैं गृह विभाग ने लोगों से नीति निर्माण की इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है राज्य जीएसटी विभाग ने कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जयपुर और पाली में एक समूह की 5 फर्मों पर कार्रवाई की है

0: विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच में पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका सामने आई है। ये फर्म्स मेहंदी पाउडर, मेहंदी कोन, हेयर कलर और अन्य सौंदर्य उत्पादों के निर्माण और कारोबार से जुड़ी हैं। विभाग की ओर से मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा के लिए आवेदन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार आगामी 20 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में मूल भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थी 22 जुलाई तक अपने आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। ये व्यवस्था राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 जुलाई के अंतरिम आदेश की पालना में की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्तियां फ्रीज की हैं। पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। जांच के दौरान 2 आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों का वित्तीय परीक्षण किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सक्रिय मॉनसून में से पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी बरसात हुई। वहीं राज्य के पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 91 मिलीमीटर बरसात चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर जिले के बयाना में 90 मिलीमीटर, पहाड़ी में 70 मिलीमीटर तथा धौलपुर जिले की बाड़ी और बारां के छबड़ा में 60-60 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को किरण का नमस्कार। सखियों, आज का युग विज्ञान, तकनीक और तेजी से बढ़ती आधुनिकता का युग है, जहां एक ओर यह आधुनिकता हमारे जीवन को सुगम और सुविधाजनक बना रही है, वहीं दूसरी ओर यह हमारी परंपराओं, संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर को धीरे धीरे लुप्त कर रही है। पहले के समय में संस्कारों का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में एक आधार के रूप में माना जाता था। ये संस्कार न केवल हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते थे, बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और नैतिकता की भावना भी प्रबल करते थे। लेकिन आज के समय में हर चीज़ डिजिटल हो चली है, लोगों का परस्पर संबंध भी ढीला होता जा रहा है। परिवार के छोटे बड़े समारोह, पितृकर्म, सामाजिक मिलन, एक दूसरे का आदर सत्कार, ये सब धीरे धीरे भुलाए जा रहे हैं। युवाओं में आज आडंबर और दिखावा बढ़ गया है, जिससे वे अपने संस्कारों को महत्व नहीं देते। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव से युवा पीढ़ी की सोच भी बदलती जा रही है। तात्कालिक सुख, फास्ट फूड, ग्लैमर की दुनिया ने उन्हें अपने संस्कारों से दूर कर दिया है। घर में बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सच्चाई का पालन करना, समय पर भोजन करना और ईमानदारी से काम करना, ये मूल बातें अब अनजाने सी लगने लगी हैं। सखियों, बातें हम और भी करेंगे, लीजिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

सखियों, क्या संस्कार और आधुनिकता साथ साथ चल सकते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी परवरिश किस माहौल में हुई है। अगर हमने अपने बचपन से यह देखा है कि परिवार में कैसे सब बड़ों का सम्मान किया जाता है, घर की परंपराओं का पालन, पूजा पाठ में शामिल होना, तीज त्योहारों पर अपने रीति रिवाजों को मानना, अपनी संस्कृति का पालन करना, तो फिर हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, अपने संस्कार को पूरी तरह न सही पर निभाएंगे जरूर। अब बात करते हैं कि आधुनिकता क्या है। सिर्फ पहनावा बदल जाने से हम आधुनिक नहीं हो जाते। आज समय बदल गया है, महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी से जॉब कर रही हैं। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो? तो स्वाभाविक है कि उसे अपने पद और रुतबे के अनुसार अपने रख रखाव पर ध्यान देना होगा। तो क्या वह आधुनिक हो गई? सिर्फ पहनावा आधुनिकता तय नहीं करता, विचारों में आधुनिकता होने पर ही हम उसे आधुनिक बोल सकते हैं। सख्य, संस्कार केवल रीति रिवाज नहीं, हमारे संस्कार हमें सही राह दिखाते हैं। वे हमें अनुशासन, संयम और परोपकार की सीख देते हैं। आधुनिकता को अपनाते हुए हमें अपने संस्कारों को भी संजोना होगा। जहाँ विज्ञान का विकास हो, वहीं संस्कारों का भी पोषण हो, तभी हम एक सभ्य, सुसंस्कृत और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। लीजिए, सुनिए एक और गीत।

सखियों, सर्वाइकल पेन आजकल एक आम समस्या हो गई है। सर्वाइकल पेन में योग करने से गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और रक्त संचार बेहतर होता है। नियमित अभ्यास से जकड़न दूर होती है और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन भी बढ़ता है। यह दर्द निवारक दवाओं पर हमारी निर्भरता को कम करता है। सखियों, योग सर्वाइकल पेन में बहुत ही फायदेमंद है। योग के अभ्यास से गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, जिससे रीढ़ की हड्डी को बेहतर सहारा मिलता है। स्ट्रेचिंग वाले आसनों से गर्दन की अकड़न कम होती है और गर्दन को घुमाने

या झुकाने में आसानी होती है। गर्दन के हिस्सों में ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक होने में भी मदद मिलती है। सखियों, सर्वाइकल पेन का एक बड़ा कारण तनाव और खराब बैठने का तरीका है। योग और प्राणायाम मानसिक शांति देते हैं और तनाव कम करते हैं। योग से सर्वाइकल के कारण होने वाले तनावपूर्ण सिर दर्द और माइग्रेन के लक्षणों में भी कमी आती है। लीजिए सुनिए एक और गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, अक्सर माता पिता शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा दाल सब्जी छोड़कर जंक फूड पसंद करता है। कई बार इसे सिर्फ जिद समझ लिया जाता है, लेकिन असल में यह आदत कुछ गलतियों और परिवेश से बनती है। समय रहते इन वजहों को समझकर हमें बच्चों की थाली में सेहतमंद बदलाव ला सकते हैं। सखियों, बचपन में ही यदि बच्चों को पैकेटबंद चीज़ें या अत्यधिक मीठा नमकीन भोजन दिया जाए तो उनकी रुचि उसी तरफ बढ़ जाती है। फिर उन्हें घर का सादा सेहतमंद खाना फीका लगने लगता है। बच्चे अक्सर सुनने से ज़्यादा बड़ों को देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता स्वयं फल, सलाद या हरी सब्जियां नहीं खाते और बच्चों के सामने बार बार जंक फूड का सेवन करते हैं तो बच्चे भी वही गलत आदत सीख लेते हैं। कई बार माता पिता बच्चे को डांटकर या डराकर ज़बरदस्ती खाना खिलाने का प्रयास करते हैं। इस दबाव के कारण बच्चे के मन में भोजन के प्रति एक गहरी अरुचि पैदा हो जाती है और वह उससे दूर भागने लगता है। कुछ बच्चे नए फल या सब्जियों को चखने से घबराते हैं। यह एक सामान्य बात है। पहली बार में उनके मना करने पर यदि माता पिता कोशिश छोड़ देते हैं तो बच्चा उस पौष्टिक चीज़ से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। टीवी या इंटरनेट पर दिखने वाले रंग बिरंगे स्नैक्स के विज्ञापन बच्चों को लुभाते हैं। साथ ही मोबाइल टीवी देखते हुए खाने से उनका ध्यान भी भटकता है और खाने के स्वाद, खुशबू और गठन को भी महसूस नहीं कर पाते। कई बार बच्चे मुँह में खाना रखकर स्क्रीन देखते रहते हैं, जिसके कारण कोर भी ठीक तरह से नहीं चबाते। लीजिए, सुनिए एक और गीत।

0: जोकर।
1: सखियों, बच्चों की आदत बदलने के लिए परिवार को अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। जब घर के बड़े सदस्य रोज फल और हरी सब्जियां खाएंगे तो उन्हें देखकर बच्चा भी धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनाने लगेगा। पूरे परिवार का साथ बैठकर भोजन करना भी इसमें काफ़ी मददगार साबित होता है। सखियों, भोजन को आकर्षक बनाएं। फलों और सब्जियों को सुंदर आकारों में काटकर और प्लेट को सजाकर हम परोस सकते हैं। खाना बनाते समय बच्चों से छोटी छोटी मदद भी लेनी चाहिए, इससे भोजन में उनकी उत्सुकता और इच्छा भी बढ़ जाती है। यदि तुम सब्जी खाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, जैसी शर्तों से बिल्कुल बचें। ऐसी बातों से बच्चे के दिमाग में चॉकलेट का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पौष्टिक भोजन उसे केवल एक मजबूरी की तरह लगने लगता है। इसके बजाय पौष्टिक खाद्य को इनाम की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बच्चा दिन भर चिप्स, बिस्किट या मीठे पेय लेता है तो मुख्य भोजन के समय उनकी भूख पूरी तरह

जाएगी, इसलिए बीच बीच में दिए जाने वाले इन अस्वास्थ्यकर नाश्तों को सीमित करें ताकि समय पर लगने वाली भूख के कारण वह घर का खाना अच्छी तरह से खाए। खाना खाते समय टीवी या फ़ोन न देखने का नियम बनाएं, न ही खुद देखें और न ही बच्चों को देखने दें। लीजिए सुनिए एक और गीत।

सखियों, मॉड्यूलर किचन हमारी घर के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि यह जगह का सही इस्तेमाल करता है, सामान को व्यवस्थित रखता है और खाना पकाने को भी आसान बनाता है। इसमें बनी बनाई मॉड्यूलर यूनिट्स होती है जिन्हें हमारी ज़रूरत के हिसाब से सेट और रिपेयर किया जा सकता है। सखियों, इसमें पुल आउट बास्केट, कॉर्नर यूनिट्स और अलग अलग साइज की दराजें होती है। इससे हमारी रसोई में कभी जगह की कमी नहीं होती। ये पारंपरिक कारपेंटर वाली रसोई के मुकाबले फैक्ट्री में सटीक मशीनों द्वारा बनते हैं। ये दिखने में बेहद आधुनिक और आकर्षक लगते हैं। सखियों, मॉड्यूलर किचन के लिए बेस्ट मटेरियल कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। हाई डेंसिटी बोर्ड, यह दीमक और नमी से सुरक्षित होता है और बजट के अनुकूल भी रहता है। BWP प्लाईवुड, यह पारंपरिक रूप से सबसे मजबूत और पानी से ख़राब न होने वाला मटेरियल है जो लंबी उम्र के लिए बेस्ट है। स्टेनलेस स्टील, अगर हम 40 से 50 साल तक चलने वाली और मेंटेनेंस फ्री किचन चाहते हैं तो स्टील कैबिन सबसे बेहतरीन विकल्प है। एक्रेलिक, यह देखने में बेहद चमकदार, प्रीमियम और साफ करने में आसान होता है। सखियों, मॉड्यूलर किचन में पारंपरिक भारतीय रसोई घरों को एक नया रूप दे दिया है। आधुनिक डिजाइन और जगह बचाने वाले समाधान के साथ ये किचन ना सिर्फ सुंदर दिखते हैं बल्कि उपयोग में भी आसान होते हैं। एक अच्छा मॉड्यूलर किचन हमारे खाना बनाने के अनुभव को भी आसान बना सकता है। लीजिए, सुनिए एक और गीत।

आटा गूंथे रोटी पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। लौकी का हलवा बनाते समय अगर लौकी में मलाई डाल के भुने तो हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। दही बड़े बनाते समय पिसी हुई दाल में थोड़ा दही मिला के फेंटें। दही बड़े अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बनते हैं। अंकुरित दालों को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में रखें। सखियों कचौड़ियाँ बनाते समय मैदे में थोड़ा सा दही डाल के गूँथें। कचौड़ियाँ सॉफ्ट और टेस्टी बनती हैं। दही जमाते समय दूध में थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डाल दें, जिससे 2-3 दिनों तक दही एकदम ताज़ा रहेगा। सखियों अब सुन लेते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अभी आपने कार्यक्रम सुना महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है एजेंडा वनडे जैसा फोकस है डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर

0: की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नाव के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को, इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की

0: सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम

0: आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: काफी सोचने के बाद मैंने महसूस किया शायद यही बात होगी कि उनकी अदाकारी में मुझे कुछ वही जोश वही लगन लगा जो मुझे हमेशा होता था। एक जो आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं मानता हूँ, शौक तो होता है एक्टिंग का, लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ एक ऑब्सेशन होना चाहिएगा एक कलाकार के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे पता नहीं उनके काम से या कभी उनको पर्सनली मैं कभी देखता भी, तो मुझे यही लगता कि जो जोश मुझ में है, जो सुबह से मेरे ख्याल से ये जो आर्टिस्ट हैं राज साहब, वो सुबह शाम रात दिन एक ही चीज़ उनके दिमाग में दौड़ती होगी और वो है एक्टिंग या फिल्म्स। और वही बात मेरे ख्याल से मुझे लगी कि मुझ में भी वही बात है, शायद यही वजह होगी जो मुझे उनसे इतना इंस्पिरेशन मिला।
1: मेरा पहला सवाल कुछ प्यासा सा रह गया है, वो बात अभी तय नहीं हुई कि आप फिल्मों में कैसे आए।
0: शुरुआत मैंने की थी एक एज एन एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद स्टेज पे मैंने काम किया, फिर स्टंट फिल्मों में हीरो का रोल किया, उसके बाद साइड रोल्स किए, और संघर्ष और शिकार तक मैंने साइड रोल्स किए थे। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ मेरे ख्याल से वो तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो फिर आपने भी देखा होगा।
1: नहीं, ऐसा है कि हमारे बहुत से सामईन ऐसे हैं जिन तक हमारी फिल्में नहीं पहुंचती हैं, तो गालिबन उनकी दिलचस्पी होगी कि वो ये जाने कि कैसे किस शख्स ने आपका जौहर पहचाना।
0: वैसे तो आसिफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी बहुत पहले, जब मेरी पहली फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी, और उन्होंने उसी वक्त मुझे बिना देखे मुझे सिर्फ दो दो मिनट की मुलाकात में उन्होंने मुझे साइन किया था लव एंड गॉड के लिए। लेकिन वो तो अब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई है, और किसी ख़ास आदमी की वजह से मैं नहीं कह सकता कि मेरा करियर बना या जो कुछ आज जहाँ कुछ हुआ, जहाँ कहीं पहुँचा हूँ मैं, वो मैं किसी ख़ास आदमी की वजह से हुआ ये नहीं कह सकता। बस ये साइड रोल्स करता रहा, आहिस्ते आहिस्ते किसी ने मुझे छोटी पिक्चर में हीरो का रोल दिया, उसके बाद कोई बड़ी पिक्चर बनी उसमें हीरो का रोल दिया।
1: ये छोटी और बड़ी पिक्चर आप किसको कहते हैं?
0: छोटी वो जो लो बजट की होती है, जो लो प्राइस में बिकती है, कम दामों में बिकती है और कम दामों में बनती है, और बड़ी जो बड़े दामों में बिकती है और जिनका बजट बड़ा होता है।
1: आप मतलब फिल्म को पैसों से तोल रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जो छोटे बजट में फिल्म बनती है वो भी बड़ी हो सकती है या नहीं?
0: जी, छोटे और बड़े का मतलब था कमर्शियली मेरा कहना। अब दस्तक मैं कहता हूँ छोटी पिक्चर है बजट वाइज, अब ये बात अलग है कि वो अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। एक बड़ी पिक्चर जो मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी पिक्चर है, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनी है, वो पिक्चर बुरी हो सकती है, और दस्तक जैसी पिक्चर जो मेरे कमर्शियल हिसाब से छोटी पिक्चर है, उस बड़ी पिक्चर से अच्छी हो सकती है।
1: आप अदाकार हैं तो अदाकार को, जैसे आपने कहा कि किसी भी फिल्म आर्टिस्ट को ऑब्सेशन होना चाहिए, तो जो शख्स इस बात में यकीन रखता हो जाहिर है कि वो पैसे को फन के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत नहीं देगा।
0: जी हाँ,
1: तो आप समझते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तवाज़ुन क्या है? आजकल पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे की अहमियत ज़्यादा है या फिल्म की आर्ट की अहमियत ज़्यादा?
0: जब एक आर्टिस्ट शुरू में आता है, पहली पिक्चर जो उसकी होती है, उस वक्त तक वो ऑब्सेशन काम आता है, और उसी का नतीजा जो होना होता है, जो फल उसको मिलना होता है वो मिलता है। और बाद में एक और भी बात है, ये कमर्शियल लाइन है, यहाँ कौन सा कलाकार चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो कब तक टिकेगा, क्या होगा उसका हशर बाद में, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं मेरी पहली पिक्चर निशान में काम कर रहा था, दिन रात मेरे दिमाग में वही रोल घूमता था, और सुबह से शाम तक रात को सोते वक्त भी मैं वही डायलॉग्स याद करता था और ये सब बातें होती थी। जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई और थोड़ी सी कामयाबी मुझे मिली और फिर जो पिक्चरें मिलने लगे, तो वो ऑब्सेशन कम होने लगा, और फिर दिमाग में यह बात आ गई कि आगे क्या होने वाला है मेरा। तो मेरे हिसाब से हर कलाकार के साथ ये होता है, शुरू में ऑब्सेशन रहता है, बाद में थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो उनका ट्रैक दूसरी तरफ चला जाता है, और एक आदमी इस कमर्शियली दुनिया में रहते हुए ये सोचता है

0: फ्यूचर के लिए कुछ अपनी सिक्योरिटी बना लें, और कुछ हद तक वो बात रहती है, लेकिन उस हद तक पहुंचने के बाद फिर वो ऑब्सेशन शुरू हो जाता है, और ये मैं अपने एग्जाम्पल से कहता हूँ।
1: आप जैसा कलाकार जिसको कामयाबी मिली हो और बहुत से रोल मिले हों और एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम करना पड़ रहा हो, तो एक साथ बहुत से किरदार निभाना आप समझते हैं कहाँ तक मुमकिन है? कोई दुश्वारी होती है? एक ही साथ बहुत सी जिंदगियां जीना क्या मुमकिन है?
0: वो तो आर्टिस्ट की काबिलियत पर रहता है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार दो दो पिक्चरों में एक साथ काम करें तो वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए उन दो रोल्स को निभाना एक साथ। मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूँ, फॉर जैसे कि खिलौना या दूसरा या दस्तक या खिलौना, जब मैं उन पिक्चरों की मैं शूटिंग करता था, हमेशा साथ साथ दूसरी एक या दो पिक्चरों की शूटिंग साथ साथ रहती थी मेरी। अब ये अलग बात है, अब तो ये तो जब एक्सपीरियंस होगा मुझे, अब के साथ 6 महीने या 8 महीने के बाद जब मेरी पुरानी कमिटमेंट सब खत्म हो जाएंगी और मैं साल में 3 या 4 पिक्चरें लूंगा और साथ एक ही पिक्चर में काम करूंगा, उसका जो नतीजा निकलता है उसे देखने के बाद पता चलेगा कि कितना फर्क होता है।
1: आप जब कोई रोल कबूल करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? कैसा रोल होना चाहिए जिसको आप पसंद कर लें?
0: मेरी कोई रोल के मामले में कोई खास पसंदगी है नहीं। मैं आज तक जितनी भी पिक्चरें की हैं, ज़्यादातर यही हुआ है कि या किसी की दोस्ती की वजह से की है, या किसी को हेल्प करने की वजह से की है, या पैसों की वजह से की है, या एक आध दो पिक्चरें रोल की वजह से भी की है। मैं समझता हूँ जो कि आर्टिस्ट के लिए रोल छोटा भी हो, अगर उसमें कुछ बात होती है, एक आर्टिस्ट छोटे से रोल में भी अगर उसमें टैलेंट्स हैं तो वो दिखा सकता है।
1: आपने अब तक जितने किरदार निभाए हैं, ज़ाती तौर पे आपको कौन सा पसंद है? ये सवाल कुछ अटपटा सा है, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं आपसे पूछ लूँ।
0: मेरी पहली फिल्म निशान, उसमें मुझे अपना रोल बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसमें डबल रोल था, हीरो और विलन का। फिर शिकार, संघर्ष, खिलौना, दस्तक और उस रात के बाद।
1: आपने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया है, किसके साथ काम करके आपको वो तसल्ली, वो खुशी हुई है जो किसी भी फनकार को हो सकती है?
0: वैसे नहीं साहब, मैंने बहुत से आर्टिस्टों के साथ काम किया है और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मुझे काम करने का बड़ा मज़ा आया है। वो जो सब आर्टिस्ट हैं उन सब के नाम नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैंने सब के नाम ले लिए तो जिनका नाम रह जाएगा वो सब बुरा मानेंगे। मैं सिर्फ दो तीन आर्टिस्टों का नाम लेता हूँ। एक तो तनुजा है, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा, ये 3-4 नाम हैं।
1: आपके दिल में किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने की आरजू है? जी चाहता है कि उनके साथ भी काम करूं।
0: वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से सभी के साथ काम किया है, तो आपका सवाल है या दोबारा करना चाहता हूँ या कोई और ऐसा आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया और
1: जाहिर
0: करना
1: है
0: चाहूँ।
1: कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के साथ तो आपने काम नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ बच गए होंगे, और आपके दिल में आरजू होगी कि काश मैं उनके साथ भी किसी फिल्म में काम करूं। जी चाहता है।
0: जैसे मैंने कि पहले बताया था, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले राज कपूर, राज साहब, उनके साथ मैंने आज तक काम नहीं किया और वही एक आर्टिस्ट मेरे ख्याल से रह गए हैं जिनके साथ काम करने की मेरी ख्वाहिश है।
1: ये सवाल मेरा इसी जवाब के लिए था। संजीव साहब, अब तक ऐसा रहा है कि लोग ये सोचते रहे हैं कि बड़ा नाम अच्छी और कामयाब फिल्म की गारंटी है। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये वहम ही साबित हुआ, और कुछ तजुर्बा जो हाल ही में हुआ है, कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें नए नाम, नए अदाकार थे और कामयाब फिल्में बनी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बड़ा नाम होना किसी फिल्म की कामयाबी की गारंटी है, या छोटे नए नाम से भी फिल्म अच्छी बन सकती है?

0: जैसे मैंने पहले कहा था नैयर साहब कि बड़े कलाकार के साथ बड़ी फिल्म बनती हैं, बड़ा जो बजट होता है वो बड़ी फिल्म होती है, छोटे कलाकार कमर्शियली छोटे, मेरा मतलब है जो नए हों या जिनका नाम ज़्यादा ना हुआ हो, छोटे कलाकार तो नहीं कहूँगा, छोटे स्टार्स के साथ जो पिक्चरें बनती हैं छोटे बजट में, वो छोटी पिक्चरें होती है। लेकिन फिर मैंने वही बात कही थी कि एक बड़ी पिक्चर बुरी पिक्चर हो सकती है और एक छोटी पिक्चर अच्छी पिक्चर हो सकती है। तो ये जो छोटे कलाकारों को लेकर छोटी पिक्चरें बनी हैं, कमर्शियली छोटी, लेकिन वो पिक्चरें अच्छी बनी हैं और कामयाब हुई है, तो बात घूम घाम के वही आ जाती है कि मेन बात जो है वो पिक्चर की है, अच्छी या बुरी, बड़ी या छोटी, वो प्रोड्यूसर के लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है, एग्जीबिटर के लिए होती है। ऑडियंस के लिए पिक्चर बड़ी या छोटी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है।
1: तो आपने जो नई फिल्में देखी हैं जिनमें यह नया अंदाज है, इनमें आपको कौन-कौन सी अच्छी लगी?
0: मुझे ये सारा आकाश अच्छी लगी, भुवन शोम अच्छी लगी, और खामोशी, अनोखी रात, बहुत सी पिक्चर हैं।
1: आप समझते हैं कि इन फिल्मों का मुस्तकबिल कैसा है? अच्छा है?
0: जी हाँ, क्योंकि ये जितनी भी पिक्चर हैं उनमें आम तौर की जो बातें होती हैं वो नहीं है, नई चीज़ हैं, और आजकल का जो जेनरेशन है वो हमेशा नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें आती रहेगी उसके लिए लोग हमेशा तैयार रहेंगे।
1: आपने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया होगा, डायरेक्टर की मुट्ठी में पूरी फिल्म रहती है, पूरा नक्शा रहता है। चंद एक डायरेक्टर जिनके काम से आपको न सिर्फ तसल्ली हो बल्कि खुशी हुई हो, उनका आप जिक्र करना चाहें तो कीजिए।
0: वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ दो डायरेक्टरों के नाम लेता हूँ। एक तो आसिफ साहब थे और महेश कौल।
1: ये क्यों अच्छे लगते हैं?
0: इनके साथ जब भी मैंने काम किया, हमेशा रोज हर शॉट में हर सीन में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे।
1: उनमें से किसी का जिक्र कर सकते हैं आप,
0: जिक्र यानी किस तरह?
1: जो आपको अच्छा लगा, जो आपने सीखा उनसे और वो आपके दिल में नक्श हो गया, आपको भूला न हो, याद हो?
0: ये जो चीज़ें कलाकार की हैसियत से मैंने सीखी है वो तो खैर मैं बयान तो नहीं कर सकूंगा, महसूस ही कर सकता हूँ। और वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मेरे आइंदा फिल्मों में, आइंदा जो मेरा काम चलता रहेगा उसमें मुझे बहुत ही मदद मिलेगी उससे। और वो जो बातें हैं वो सिर्फ एक कलाकार महसूस कर सकता है, मेरे ख्याल से ठीक से समझा नहीं पाएगा वो।
1: आपने फिल्में जो बनाई हैं बहुत सी, कई बार ऐसा होता है कि कोई खास सीन दिल में अटक जाता है, लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। कोई याद है सीन ऐसा आपको, किसी भी फिल्म का हो?
0: वैसे तो नहीं है साहब, कई इंसिडेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त मुझे एक याद आ रहा है हादसा। वो फिल्म है उस रात के बाद का,
1: जी
0: उसमें मैंने डबल रोल किया है, फादर बाप और बेटे का। उसमें तनुजा मेरी बेटी बनी हुई है और बहन भी बनी हुई है। उसमें एक सीन था कि जो बेटी है वो बाप से झगड़ कर घर छोड़ के जा रही है, और ये बूढ़ा आदमी हो चुका है और अपनी बेटी को गले से लगा कर कहता है कि मैं एक सूखा पत्ता हूँ, किस वक्त
1: टूट के
0: टूट के गिर
1: गिर
0: जाऊँगा, इस किस्म का कुछ डायलॉग था और बड़े इमोशनल होके ये बोलना था। और बेटी जैसे

0: इल्तिजा करता है कि इस वक्त मुझे छोड़कर मत जाओ वगैरह वगैरह। तो वो सीन जब मैंने किया तो कट होने के बाद पता नहीं क्या बात हुई, मुझे ये जो आर्टिस्ट है तनुजा, यही महसूस करता रहा कि वाकई मेरी बेटी है। और जब पैकअप हुआ और जब जा रही थी तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया, फिर अपने गले से लगा लिया और मैंने उसे कहा कि वाकई जी चाहता है तो मैं यही कहूँ कि तुम मत जाओ छोड़ के बेटी। और ये भी कुछ फीलिंग महसूस हो रही थी कि वाकई ये कुछ मेरी बच्ची है। ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो ना तो मैं समझा सकता हूँ और
1: महसूस
0: महसूस
1: आपने
0: कर सकता हूँ बस।
1: संजीव साहब, ये जो फिल्म आर्टिस्ट होता है उसका नाता फिल्म देखने वालों से कुछ बड़ा अजीब सा होता है। स्टेज पे नाटक होता है तो एक्ट करने वाले को लोग बाद में फौरन मिलते हैं, सामने भी देखते रहते हैं, लेकिन ये जब तक फिल्म लोग देख नहीं लेते तो पता नहीं लगता कि उनको कैसी लगी। तो बहुत से लोग आपकी अदाकारी के चाहने वाले आपसे मिलते होंगे, किसी एक की बात जो आप ये समझें कि आपके फन पे पूरी उतरती है और आपको पसंद भी है।
0: वैसे तो आमतौर से जो मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हमको उस फिल्म में आपका काम बहुत अच्छा लगा, या उसमें ठीक नहीं लगा, या वो डायलॉग हमको बहुत पसंद आया, और इस किस्म के रोल आप करते हैं तब हमको पसंद हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन कोई ऐसा रिमार्क या कुछ ऐसी बात जो मुझे अब तक याद हो, अगर आप वो सुनना चाहें तो वो फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं है, स्टेज का एक एक्सपीरियंस है, जो अगर आप चाहें तो मैं बता दूं आपको।
1: जी इरशाद।
0: मैंने एक प्ले किया था, आर्थर मिलर का प्ले था, ऑल माय सन्स, उसका हिंदी में एडेप्टेशन हुआ था, जिसमें मैंने वो मेन रोल जो बूढ़े का है वो किया था। और मेरे ऑपोजिट मेरी बीवी का रोल, उस वक्त मेरी उम्र मेरे ख्याल से 21 या 22 साल की होगी, लेकिन लीला चिटनिस ने किया था। और उसी प्ले के लिए मुझे महाराष्ट्र स्टेट से अवार्ड भी मिला था। खैर, तो वो प्ले जब चल रहा था एक दिन, तो मेरे कुछ को आर्टिस्ट हैं जो उस प्ले में काम करे थे, उनके कुछ रिश्तेदार आए थे देखने। प्ले ख़त्म होने के बाद हम उसी दोस्त की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे और उसके रिश्तेदार भी उसमें थे। तो प्ले की बात निकली तो उन लोगों ने कहा कि हमको तो खैर सबका काम ठीक लगा, लेकिन वो जो बुड्ढा था उसका काम बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूछने लगे आपकी क्या राय है
1: तो क्या
0: आप।
1: कहा आपने?
0: मैंने कहा हाँ, आप अगर समझते होंगे तो ठीक था, लेकिन उस जगह पर मुझे वो कुछ खटकने लगा, वहाँ कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। बोले नहीं साहब, आपने गौर से नहीं देखा होगा, हमको तो वही रोल अच्छा लगा, और क्या आप हमसे आप हमारी बात को नहीं मानते। खैर, मैं चुपचाप रहा, और जब मैं मेरा घर आ गया, मुझे जब मेरे दोस्त ने छोड़ा, तो जाते वक्त उस दोस्त ने मेरा परिचय ठीक से करवाया कि ये वही आदमी है जिसने वो रोल किया था। तो खैर, उनके साथ जो गुजरी होगी वो तो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये हादसा मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर याद रखूँगा मैं।
1: आप मज़ा लेते रहे उनकी लाइन का। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब शुरू शुरू में आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो आपने अपनी आवाज़ को पूरी तरह ढाला नहीं, जिस तरह आप अब मकाल में अदा करते हैं उस अंदाज में पहले अंदाज में थोड़ा फर्क है। आप समझते हैं कि आपने कोई मेहनत की है इस सिलसिले में?
0: मेहनत की वो तो बात है, लेकिन एक मेरे हिसाब से एक कॉन्फिडेंस की बात है। जब एक आदमी में कॉन्फिडेंस आता है, ये तो अब बात वैसे ही आमतौर से लोग कहते हैं कि अब इसकी आवाज़ खुलने लगी है, या ये अब बोलने लगा है, या कुछ वो वही बात है मेरे ख्याल से, किसी तरह उसी बात। क्योंकि जब मैं स्टेज पे आमतौर से जब मैं लोग प्रोड्यूसर से मिलता, तो कई लोगों का यही कहना था कि हम यकीन नहीं कर सकते ये आदमी एक्टिंग भी कर सकते, इसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ये शिकायत बहुत से लोगों थी पहले से ही, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर उसमें वही बात है कि कॉन्फिडेंस की बात थी।
1: वैसे अब जो आपकी बात सुन रहे होंगे उनको काफ़ी एतमाद होगा कि आप खूब बोलते हैं। इंसान की ज़िंदगी में चाहे वो कितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, कोई ना कोई हसरत बाकी रह जाती है कि ये भी हो जाए तो अच्छा है। कोई हसरत है आपके दिल में जो आप समझते हैं कि अभी तक जितनी आरजुएं थीं वो तमाम पूरी नहीं हुई?
0: आरजुएं तमाम नहीं थी, एक ही आरजू थी, और वही आरजू अभी तक ख़त्म नहीं हुई।
1: वो क्या है?
0: वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़ा

0: कलाकार बनने की, और मेरे हिसाब से अभी तक वो बात हुई नहीं है।
1: आप समझते हैं कि अभी आपको इत्मीनान नहीं है जिस मंजिल पे आप पहुंचे हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं?
0: जी हाँ, जिस मंजिल पे मैं पहुंचना चाहता था और पहुंचना चाहता हूं, उससे तो अभी बहुत ही दूर हूं।
1: कोई अपनी फिल्म बनाने का इरादा है आपका? वैसे अक्सर होता है कि कामयाबी मिलने के बाद लोग अपनी फिल्म बनाने की सोचते हैं, आपने सोचा है कभी?
0: खैर फिलहाल तो नहीं, कुछ अरसे बाद जब मेरी पुरानी जो कमिटमेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी, और जब मैं साल में एक या दो या तीन पिक्चरों में काम करने लगूंगा, उसके बाद शायद कुछ इरादा है वैसे मेरा।
1: कैसी फिल्म होगी वो?
0: वो फिल्म छोटी होगी, मतलब बड़े बजट की नहीं होगी, बड़े कलाकार उसमें नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो आम तौर से जो पिक्चरें बनती हैं, डेफिनेटली उससे हटकर ही बनाने की कोशिश करूँगा।
1: कहानी के पे ज़्यादा आप तवज्जो देंगे?
0: ना सिर्फ कहानी पे, आर्टिस्ट हूँ कलाकार हूँ, इसलिए वो एक ऑब्वियस बात है कि रोल का भी मैं भी चाहूँगा कि जो रोल जहाँ मुझे भी ज़्यादा स्कोप मिले एज एन एक्टर, वो भी बात वहाँ ज़रूर होगी। कहानी, खैर कहानी तो होनी ही चाहिए, वो तो मेन बेस है पिक्चर की।
1: ये एक अंदाज सा रहा है कि हमारी फिल्मों में जो फिल्मी नाम हैं, दिलीप कुमार, राजकुमार, बहुत से, मतलब कुमार का लफ्ज़ ज़रूर आता है। आपने अपने नाम में ये लफ्ज़ किसी ख़ास मसलहत की वजह से रखा है या आप?
0: वो जी मेरा असली नाम या अपना नाम है हरिहर।
1: अच्छा नाम है।
0: और मैंने शुरुआत की स्टंट पिक्चरों से, और मुझे डर यही था कि ये स्टंट पिक्चरों से मैं अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ कलाकार की हैसियत से, तो शायद ये अगर नाम रखूँगा हरिहर तो मैथोलॉजीज में एंड अप हो जाएगा मेरा कैरियर, क्योंकि ये नाम जो है वो ऐसा नाम नहीं है जो ऑडियंस जल्दी से अपना लें।
1: वैसे इसमें भक्ति रस काफी है।
0: तो इसलिए तो मैंने कहा कि फिर डर यही था कि स्टंट से शुरू होकर मेरा कैरियर मैथोलॉजी में ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वैसे ही कुछ खास वजह नहीं थी ये कुमार रखने की, लेकिन जब मैंने सोचा कि बाकी सब चीज़ें तो हो गई ही, लेकिन क्यों ना एक ऐसा नाम रखा जाए जो आसानी से लोगों के ज़बान पर भी चढ़ जाए।
1: तो नाम आपने खुद रखा या किसी ने रखा?
0: जी
1: हाँ,
0: मैंने खुद रखा।
1: ये नाम आपको पसंद है?
0: ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से बुरा तो नहीं है इतना।
1: नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं चाहता था आपकी राय ले लूं। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं?
0: मैं सूरत का रहने वाला हूँ, गुजरात का।
1: तो हिंदी और उर्दू बोलने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं लगती?
0: मुश्किल खैर, क्योंकि मेरी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और जिस माहौल में मैं घूमता था, ज़्यादातर लोग पंजाबी थे, मुस्लिम्स थे, पंजाबी थे, और इप्टा में मैंने काम किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, वहाँ पर मैंने बहुत सालों तक काम किया, तो वहाँ माहौल वही होता था हिंदी बोलने वालों का और उर्दू बोलने वालों का।
1: पिछले दिनों बहुत सी खबरें आई हैं आपकी शादी के सिलसिले में। एक ही मामला है जिसमें इंसान की अपनी राय चलती है, तो आप इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं? चाहते हैं तो कब और किस से?
0: तीन सवाल आपने पूछे हैं, शादी करना चाहते हैं मेरे ख्याल से ये पहला सवाल था
1: जी।
0: वो तो जी, उसके लिए तो कोई, ये तो मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता अदम्य साहस सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मेडल्स कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से

0: नहीं, ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
1: जी
0: उसको,
1: जी
0: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
1: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी, के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
0: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश
1: जी
0: के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने
1: जी
0: देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब
1: जी
0: आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है।
1: क्या
0: इस
1: बात है,
0: जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
1: क्या बात है सर। देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
0: जी 2018 यूपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में। सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहाँ पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई,
1: जी
0: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की
1: जी
0: कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा करके फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी जी तो वो सफर जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई, और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना, तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी,
1: जी
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
1: जी
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में
1: जी
0: अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
1: जी
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं,
1: जी
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा राष्ट्र
1: मातृभूमि,
0: मातृभूमि।
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर
1: जी
0: पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और
1: जी
0: ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या
1: जी
0: आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो
1: जी
0: पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो एसएसबी जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजीशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने जीआईएस कोर्स किया एसएसबी की एकेडमी भोपाल से, तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल। ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव, आईडी जैसी घटनाएं आमतौर पे कई ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है, उस
1: जी
0: क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने जीआईएस कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी।

0: और बढ़ा सके आप।
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत
0: जी
1: सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं।
0: जी
1: इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
0: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक
0: जी
1: फौजी में तब्दील करती है, लेकिन वो दैट
0: एग्जैक्टली
1: इज़ द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है,
0: जी
1: उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और
0: जी
1: एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज
0: मतलब
1: कराए
0: आप
1: जाते
0: अपनी
1: हैं।
0: निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसमें एडिशन करते रहें। इसी
1: ये
0: एडिशन में आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की, कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल
0: जी
1: दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में,
0: जी
1: दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
0: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
1: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो
0: जी
1: समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
0: सर, आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज़ में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली,
0: जी
1: जो कि बिहार के लखीसराय ज़िले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक़ है
0: जी
1: तो सन ऑफ सॉइल होने का फ़ायदा मुझे वहाँ पे मिला, मतलब वहाँ पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं,
0: जी
1: नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज़्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बीइंग अ लोकल मुझे ये फ़ायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
0: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में, अभी तक की आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं।

0: कि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CINGW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
1: जी,
0: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
1: बहुत खूब सब, क्या बात है
0: इसके अतिरिक्त तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है,
1: जी।
0: बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
1: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर
1: जी
0: के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
1: जी तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
1: जी
0: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वो बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है, ताकि
1: जी
0: वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सकें।
1: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
0: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
1: क्या बात है,
0: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है, ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
1: जी
0: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है,
1: जी
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के तीन रास्ते हैं।
1: जी
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है,
1: ओके
0: जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
1: ठीक है
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने
0: जी
1: यूपीएससी
0: बिल्कुल,
1: पास करके
0: जी बिल्कुल,
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे,
1: जी
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह,
1: जी
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबॉर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद,
1: जी
0: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
1: जी और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी, बिल्कुल, वो मेरे मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबॉर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में।
1: जी तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये

0: किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से,
0: जी
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है, वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना।
0: जी
1: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में। जिस एरिया में मैं काम करता था
0: जी
1: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे, जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
0: जी
1: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते
0: जी
1: चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन
0: जी
1: का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
0: ओके तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे,
0: जी
1: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर, किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे
0: जी
1: ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना। और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी, कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
0: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली
0: जी
1: खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
0: जी
1: या आतंकवादी को मार दिया। असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकलें, जब आपका कॉन्वॉय निकले,
0: जी
1: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले, और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
0: क्या बात है,
1: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पर रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
0: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है,
0: जी
1: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
1: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
0: जी
1: मैं आपको छोटा सा वृत्तांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है
0: जी
1: उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको,
0: जी
1: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022, जो मुठभेड़ का दिन था,
0: जी
1: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे। कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई, लगभग
0: जी
1: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए, और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे, श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने 2 टीमें बनाई, और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी,
0: जी
1: क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं,
0: जी
1: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये,
0: जी
1: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
0: ओके,
1: तो
0: यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो
1: जी
0: लोग।
1: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे, तो
0: जी
1: एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई।

0: और जंगल में एक सिद्धांत चलता है,
1: जी
0: यू मिस एंड आई हिट, और
1: ओके
0: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था, वो हम में
1: ओके
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि
1: जी
0: हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जा कर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो
1: जी
0: नक्सल एनकाउंटर होता है ना,
1: जी
0: ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा
1: जी
0: है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई,
1: जी
0: उसके बाद जा कर के हमने देखा, तो हमने पाया कि दो बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज़ थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब
0: जिस
1: जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो

0: जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई,
1: जी
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा, तो हमने पाया कि दो बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज़ थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब
0: जिस
1: जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था, अर्जुन कोड़ा,
1: जी
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने। और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर
1: मर
0: जाऊँ,
1: जाऊंगा।
0: मैं मर
1: जी,
0: जाऊँगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। मैं इसे अपने जीवन
1: बिल्कुल
0: का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा,
1: बिल्कुल सर,
0: जहाँ पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था, कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व,
1: जी
0: हमने सेवाएं दी वहाँ की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ,
1: बिल्कुल
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था
1: जी,
0: उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था और
1: क्या
0: उनमें
1: बात
0: बैठ के
1: है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था, उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी, तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है, वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं, मैं
1: जी
0: उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता
1: जी
0: है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं।
1: जी
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना,
1: जी
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो
1: जी
0: अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं,
1: जी
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस का
1: बिल्कुल
0: वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो
1: बिल्कुल,
0: आनंद आता है, वो
1: उसके
0: उसको
1: कहने क्या है,
0: उसको लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा
1: क्या बात
0: सकता।
1: है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल AIR न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची तिरुचुपल्ली तमिलनाडु से।
0: जी धन्यवाद, और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर, आपको SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा कजरा लिखा है ये।
1: कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते
0: बिल्कुल
1: हैं?
0: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे
1: अच्छा
0: जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है, क्योंकि
1: जी बिल्कुल
0: ये मेरे
1: बिल्कुल,
0: टीम के साथी हैं
1: साथी
0: जिन्होंने
1: हैं आपके।
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर।

0: I would like to pay my gratitude to Shivam sir and all our Indian army from bottom of my heart. It's because their selfless service with dedication, devotion, they discharge their duty fearlessly. They are real heroes. I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, आपका message हमने पहुंचा दिया है, Shivam sir सुन रहे हैं.
1: जी, धन्यवाद, Mrs. and Mr. Lodh जी. मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी. इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से.
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी. मुझे खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं.
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है. ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको.
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया.
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं. आप हमारे असली नायक हैं. जय हिंद, जय भारत. यह है नेहा मिश्रा सर.
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं.
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए. रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से.
1: जी रोहित जी, धन्यवाद. मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर. हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा. शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में. सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है.
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना
0: है,
1: उद्देश्य था.
0: बिल्कुल, करीब लाना है. जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ. उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से. गारंटी अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको.
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद.
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन. मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार.
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए.
0: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है. ये हैं मृदुल झा.
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
0: जी जी जी उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेट रही होंगी. मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर. ये एफएम रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार. कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है. हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं. उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद.
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं,
0: मैं okay.
1: तो अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
0: okay.
1: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है.
0: क्या तो, बात है सर. तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से. आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और ये हैं शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम. ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror-free. Proud of him. Ayush Dhadich hain ye, Nayi Delhi se.
1: Ji bilkul, ye hamare junior hain aur main ummeed karta hu ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai, us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain usko maqam tak le jayenge apni team ke sath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji bilkul.
0: Aur ye hain Naxali operation ko successful banane ke liye bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका.
0: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है. शिव हैं ये मेरठ से.
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है.
0: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला. कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया. शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो. टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी
1: जी, पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को

0: बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन ये
0: जी
1: संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है, और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है, और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए। इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज़ हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में। तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है,
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशन हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के
0: नवंबर, जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ,
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
0: जी, और सर इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है,
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
0: जी, तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं।

0: मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई कार्य करता है अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं,
0: जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: तब सिर्फ राष्ट्र हित और देश हित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
0: जी
1: लिए मैं ये कर रहा था,
0: जी
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से एसएसबी में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
1: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि तीन हम लोग चार भाई बहन हैं, और मेरे माता पिता हैं, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
0: जी
1: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
0: जी
1: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से,
0: ओके
1: लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
0: जी
1: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
0: जी
1: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
0: तो
1: वो
0: जाहिर है ये
1: बहुत
0: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
1: सबसे
0: सपोर्ट।
1: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
0: सर, बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं, यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथ ही होंगे
1: बिल्कुल, मेरे साथ
0: बाबुल
1: ही हैं, और
0: जी।
1: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
1: धन्यवाद सर।
0: जय हिंद,
1: जय हिंद, जय भारत।

संदेश टू सोल्जर। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 यानी 918 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। शाम के 5 बज चुके हैं। ये समय है हमारे नौजवान साथियों के कार्यक्रम युववाणी का।

सभी युवा साथियों को आज नमस्कार अपने दोस्त संजय बैद की ओर से। दोस्तों, आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम आपके लिए एक वार्ता लेकर आए हैं जिसका विषय रहेगा पारिवारिक संस्कार और सकारात्मक सोच। वार्ताकार होंगी निकिता।

लेकिन पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें इस बात के साथ, इस संदेश के साथ और आज की इस सुहानी शाम में अपनी इन बातों के साथ। किसी ने लिखा है, गीत हो या गजल गुनगुनाया करो, गम में भी यार तुम मुस्कुराया करो, हर घड़ी दोस्तों को न परखा करो, दुश्मनों को भी कभी आजमाया करो, जिंदगी का तजुर्बा है कहता यही, खुद को अपनी नजर से बचाया करो, है जरूरी सफर जिंदगी में मगर वक्त घर में भी साहब बिताया करो, गांव तक जिसकी खुशबू पहुंचती रहे शहर में नाम इतना कमाया करो, और मौत के बाद भी वो तमाशा चले कोई किरदार ऐसा निभाया करो।

आज के युवानी का सफर अब आरंभ हो गया है और आज के सफर में मित्र हम आपको ले चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और इसकी राजधानी जयपुर, जिसे हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। एक ऐसा शहर जो अपनी स्थापत्य कला के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। और ये इस नाम इसलिए पड़ा, जब 1876 में जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह थे और उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट जयपुर पहुंचे थे, उस समय राम सिंह ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था और तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा। क्योंकि जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस शहर को जयपुर कहा जाने लगा। सन 2019 में यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ इतने पर्यटन स्थल हैं कि उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। चाहे वो आमेर का किला हो जो अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, और ये किला अपनी हिंदू और मुगल वास्तुकला, शीश महल और भव्य प्रांगण के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का हवा महल जो एक खूबसूरत गुलाबी रंग की 5 मंजिल इमारत है, जिसमें 953 झरोखे हैं, और जब हम उन झरोखों में खड़े होते हैं तो ऐसी हवा का एहसास हमें महसूस होता है, जिससे हमारा रोम रोम खिल उठता है। मानसागर झील के बीचों बीच स्थित जल महल अपने शांत वातावरण और अद्वितीय सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, आमेर के किले के अलावा ये 2 किले ऐसे हैं जो जयपुर की सुरक्षा के लिए पहाड़ियों पर बने हैं और जहां से जयपुर का पूरा विहंगम दृश्य दिखाई देता है। जयपुर की जो संस्कृति है, जहाँ की हस्तशिल्प है, जो मीनाकारी के आभूषण हैं, बंदेश के कपड़े हैं, राजस्थानी जूतियों का जो बाजार है, ये पर्यटकों के लिए एक खरीदारी का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ का बिड़ला मंदिर, यहाँ का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ऐसी ऐसी इमारतें हैं, ऐसे ऐसे इतिहास के, वास्तुकला के नमूने हैं जिनको देखकर मन रोमांचित हो उठता है। शहर में और भी दर्शनीय स्थल हैं, गणेश का मंदिर है, बिड़ला मंदिर है, बिड़ला तारा मंडल है, अनेक ऐसे ऑडिटोरियम, अनेक ऐसे स्थान गुलाबी नगरी को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ की हरियाली, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के मुख्य मुख्य

बाजार जैसे जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, MI रोड, अनेक ऐसे विश्व प्रसिद्ध स्थान हैं, सड़कें हैं जो जयपुर की एक उत्कृष्ट पहचान है। यहाँ का सिटी पैलेस राजा महाराजाओं का बनाया हुआ एक ऐसा महल है जो आज भी अपनी राशि ठाट बाट के कारण जाना जाता है। हजारों पर्यटक इस महल को देखने के लिए रोज वहाँ पहुँचते हैं। इसमें जो एक म्यूजियम है जिसमें पुरानी राजस्थानी पोशाकें, राजा महाराजाओं के कपड़े, उनकी तलवारें, उनके हथियार, उनकी मीनाकारी और जड़ाऊ वाले जवाहरात, प्राचीन बर्तन, अनेक ऐसी ऐसी वस्तुएं संग्रहालय में रखी गई हैं जो बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। तो आइए इस जयपुर के सफर का हमारे साथ मिलकर आनंद लें।

0: दोस्तों, चाहे जयपुर हो या दिल्ली हो, हम कहीं भी घूमें देश दुनिया में, कहीं भी पर्यटन करें, लेकिन जो असली मजा है वो अपने घर और परिवार के साथ ही आता है। यदि परिवार में आपसी सामंजस्य है, बच्चों में संस्कार हैं, हमारे एक दूसरे की सोच, एक दूसरे के प्रति विश्वास की है, समर्पण की है, तो वो परिवार दुनिया का सबसे सुखी परिवार है। हमारी भारतीय संस्कृति भी यही रही है कि हमें अपने बुजुर्गों से, अपने परिजनों से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से जो भी संस्कार मिलते हैं वो हमारे खून में रम गए हैं, और वही संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं ताकि हमारा जो परिवार है सुदृढ़ रहे, एक रहे और समाज में एक अलग स्थान वो रखे। हमारे पारिवारिक संस्कार क्या हैं और सकारात्मक सोच का इस पारिवारिक एकता पर, हमारे संस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए सुनते हैं एक वार्ता। वार्ताकार हैं निकिता।
1: श्रोताओं, जीवन की इस भाग दौड़ में कभी कभी कुछ पल ठहर कर पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। याद आता है वह बचपन जब माँ की एक से एक दिन भर का मार्गदर्शन बन जाती थी, पिता का एक शब्द हिम्मत दे जाता था, और दादा दादी की कहानियों में जीवन के बड़े बड़े सत्य छिपे होते थे। समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है, जीवन की रफ्तार भी पहले से कहीं तेज हो गई है, लेकिन एक बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहली थी, और वह है हमारे पारिवारिक संस्कार और सकारात्मक सोच। कहा जाता है कि किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की जीवन की नींव उसके संस्कार होते हैं। यदि संस्कार मजबूत हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति अपने मार्ग से भटकता नहीं है, और यदि उसके साथ सकारात्मक सोच भी जुड़ जाए तो जीवन की कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगती है। मित्रों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन कई बार दिलों के बीच की दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। घर बड़े हो गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट कहीं कहीं कम होती दिखाई देती है। ऐसे समय में पारिवारिक संस्कार किसी दीपक की तरह हैं, जो जीवन के अंधेरों में भी सही राह दिखाते हैं। हम जीवन का पहला पाठ किसी विद्यालय में नहीं बल्कि अपने परिवार में सीखते हैं। जब

हमें सच बोलना सिखाती है। पिता मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाते हैं। जब दादा दादी अपने अनुभवों से जीवन के मूल्य बताते हैं, तब केवल बातें नहीं सिखाई जा रही होती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की नींव रखी जा रही होती है। जरा सोचिए, यदि किसी बच्चे को बचपन से ही प्रेम, सम्मान, सहयोग और अनुशासन का वातावरण मिले, तो वह बड़ा होकर केवल सफल ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनता है। ऐसे लोग समाज को आगे बढ़ाते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। संस्कार कोई अध्याय नहीं है जिन्हें पढ़कर भूल जाया जाए। संस्कार तो जीवन जीने की कला है। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता मिलने पर अहंकार न करें और असफलता मिलने पर निराश न हो। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। श्रोताओं, आज हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा तो देना चाहते हैं, उन्हें सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि शिक्षा व्यक्ति को योग्य बनाती है, जबकि संस्कार उसको श्रेष्ठ बनाता है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह रखना, जरूरतमंद की सहायता करना, सत्य का साथ देना और अपने कर्तव्य को समझना, यही वे मूल्य हैं जो एक अच्छे परिवार और अच्छे समाज की पहचान होते हैं। लेकिन मित्रों, केवल संस्कार ही पर्याप्त नहीं है। जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच का होना भी उतना ही आवश्यक है। सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो टूटती हुई उम्मीद को फिर से जोड़ देती है। यह वह विश्वास है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक नया कदम है। जीवन में संघर्ष सबके हिस्से आते हैं। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, तो कभी मन निराश हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से संचालित होता है। एक ही परिस्थिति को दो लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति समस्या देखता है और दूसरा अवसर। एक व्यक्ति हार मान लेता है और दूसरा नई शुरुआत करता है। फर्क केवल सोच का है और ये सकारात्मक सोच हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? ये सोच हमें अपने परिवार से मिलती है। जिस घर में प्रेम होता है, विश्वास होता है और एक दूसरे का सम्मान होता है, वहाँ पलने वाला बच्चा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर बड़ा होता है। उसे ये विश्वास होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उसका परिवार उसके साथ खड़ा है। आज समाज में तनाव बढ़ रहा है, रिश्तों में खटास बढ़ रही है और लोग छोटी छोटी बातों पर टूटने लगे हैं, नाराज होने लगे हैं। ऐसे समय में हमें फिर से अपने संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी देने होंगे, क्योंकि डिग्री

0: व्यक्ति को सफल बना सकती है, लेकिन संस्कार ही उसे महान बनाते हैं। याद रखिए, धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, समय बीत जाए तो नई शुरुआत की जा सकती है, लेकिन यदि संस्कार खो जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए हमारे जीवन में संस्कार का भी उतना ही महत्व है जितना हमारी शिक्षा का। प्रिय श्रोताओं, आज समाज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो आधुनिक हो लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े हों, जो प्रगति करे लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलें, जो बड़े सपने देखें लेकिन अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी समझें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, संस्कार हमारी जड़ें हैं और सकारात्मक सोच हमारे पंख। जड़ें अगर मजबूत होगी तो जीवन का कोई तूफान हमें कभी गिरा नहीं सकेगा, और सकारात्मक सोच हमारे भीतर वह विश्वास जगाएगी जो हमें हर कठिनाई से आगे ले जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने संस्कार को संजोएं, सकारात्मक सोच को अपनाएं और आने वाली पीढ़ी को ऐसी अमूल्य विरासत दें जिस पर उन्हें हमेशा गर्व हो।
1: पारिवारिक संस्कार और सकारात्मक सोच। दोस्तों, अभी आपने निकिता से ये वार्ता सुनी। वार्ता में हमने जाना कि किस तरह से परिवार की एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसको समाज में एक पहचान दिलाने के लिए संस्कार के साथ साथ सकारात्मक सोच की भी आवश्यकता रहती है। हम चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच हमें पीछे ढकेल देती है। कहते भी हैं, पांव की मोच और नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और नकारात्मक विचारों को अपने आसपास ना फटकने दें।
2: सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हम आपसे बात कर रहे थे पारिवारिक संस्कार की। ये संस्कार हमें देते हैं हमारे बुजुर्ग। उनके पास संस्कारों का, अनुभव का वो खजाना है जो वो अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। यदि बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमने अपने जो बाल हैं वो धूप में सफेद नहीं किए, तो ये बात बिल्कुल सच है। उनके पास अनुभव की इतनी दौलत है, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, उन्हें संस्कारित करने के लिए उस पूरी दौलत को लुटा बैठते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है, पाया है, समझा है, जाना है, उसमें हमारे माता पिता का, हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम चाहे किसी भी पद पे हों, कितना ही धन क्यों ना कमाते हों, यदि बुजुर्गों का हाथ हमारे पीछे ना होता तो शायद हम उस मंजिल तक ना पहुंच पाते जहां हम आज पहुंच चुके हैं। इसलिए बुजुर्गों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा वो

हैं और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है। हम अपने बच्चों को जो कुछ भी संस्कार देना चाहते हैं वो हमें अपने माता पिता से मिले हैं, और जो कुछ हमें मिला है उसे लौटाना हमारा धर्म है। बुजुर्ग आज कई जगह उपेक्षा का शिकार हैं, बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं,

बुजुर्ग आज कई जगह उपेक्षा का शिकार हैं, बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं, उनकी देखभाल ढंग से नहीं हो पाती, बच्चे दूसरे शहरों में काम करते हैं, हालांकि वो अपने माता पिता को पैसा भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, लेकिन उम्र का एक ऐसा दौर होता है जिसमें पैसा सब कुछ नहीं होता। हर बुजुर्ग अपनी संतान का साथ चाहता है, उनका प्यार चाहता है, वो चाहते हैं कि उनकी बातों को लोग सुने और उन्हें अपनी बात का प्रत्युत्तर भी मिले, इसलिए हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और जब भी जिस किसी जरूरत की उन्हें आवश्यकता है वो हम उनकी आवश्यकता को पूरा करें। घर के जो भी निर्णय हैं उसमें जो आखिरी निर्णय हैं वो हमारे माता पिता का, हमारे बुजुर्गों का ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पास जितना अनुभव है, जितने साल उन्होंने दुनिया के उतार चढ़ाव देखने में गुजारे हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान दें, उनकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ साल बाद वो नहीं रहेंगे, सिर्फ उनकी यादें हमारे साथ रह जाएंगी। किसी ने कहा भी है, टहनियों पर लगे पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, चंद रोज में खुद व खुद झड़ जाएंगे। बैठा करो कुछ तो बुजुर्गों के पास तुम, एक दिन खुद यही चुप हो जाएंगे। खर्चने दो उन्हें बेहिसाब तुम यारो, एक दिन सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। मत टोको उनको बार बार बात दोहराने पर, एक दिन हमेशा के लिए वो खामोश हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद सर पे ले लिया करो तुम, वरना फिर वे तस्वीरों में ही नजर आएंगे। खिला दो उनकी पसंद का उनको, फिर श्राद्ध में भी देखना खाने नहीं आएंगे।

सुनो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रैफिक के नियमों की, क्योंकि हम आज एक सफ़र पे हैं और सफ़र में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें यातायात के नियमों का पालन भी करना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात तो कि वाहन चलाते समय आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। कभी भी नशे में ड्राइविंग ना करें। यदि आप चौपहिया वाहन चलाते हैं तो उसमें प्रत्येक सवारी के लिए सीट बेल्ट का उपयोग करना आवश्यक है। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। कभी भी वाहन की क्षमता से ज़्यादा सवारियां ना बिठाएं, ना ही उसमें ज़्यादा माल ढोएं। यदि आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो उसमें ऐसी खबरें थी कि अनेक बार चालान होने के बावजूद अनेक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, यानी वो यातायात के नियमों का खुल्लम खुला उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हमें यातायात के नियम तोड़ते हैं तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, हमारा लाइसेंस निलंबित हो सकता है, हमें बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी यातायात के नियमों को अपनी सुविधा के लिए, अपनी जल्दीबाजी के लिए ना तोड़ें। कभी भी वाहन का गलत ओवरटेक ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं हैं वो गलत ओवरटेक के कारण होती हैं। यदि आप ऐसे वाहन को चलाते हैं जिसका बीमा नहीं है या जिसका प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो ऐसे वाहन को चलाने से बचें। वाहन चलाते समय उसके पूरे कागजात पूरे होने चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए। एक सुरक्षित सफ़र के लिए वाहन की जो फिटनेस है वो आवश्यक है। इसके अलावा वाहन चालक की फिटनेस भी ज़रूरी है। कई बार लोग नशे में वाहन चलाते हैं जिसकी वजह से अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सिग्नल के जो भी नियम हैं हम उनका भी पालन करें।

कभी भी लाल बत्ती को क्रॉस ना करें। पीली बत्ती जब हो रही हो तब अपने वाहन को धीमा कर दें और हरी लाइट जलने पर ही अपने वाहन को आगे बढ़ाएं। गति सीमा का ध्यान रखें। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है, यदि वहाँ कोई ट्रैफिक का कर्मचारी नहीं है और आप तेज गति में वाहन चला रहे हैं, तो ऐसे ऑटोमेटिक कैमरे लगे हैं जो आपके वाहन की फोटो खींच लेते हैं और जो दंड का चालान है वो आपके मोबाइल पर SMS के रूप में आ जाता है। इसलिए नियमों का पालन करते हुए ध्यान से अपने वाहन को चलाएं, क्योंकि ना केवल आपकी जान कीमती है बल्कि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जान की उतनी ही कीमत है जितनी आपकी। यातायात के नियम जो बनाए जाते हैं वो सरकार हमारी सुविधा के लिए बनाती है, हमारी जान की रक्षा के लिए बनाती है। इसलिए हमेशा यातायात के नियमों का पालन करते हुए हंसते हंसते अपने सफर को आगे बढ़ाएं।

और अब हम सफर के उस पड़ाव तक आ पहुंचे हैं जहां हमें जानना है आज यानी 9 जुलाई का इतिहास। दोस्तों, आज ही के दिन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। 1816 में आज ही के दिन अर्जेंटीना स्पेन से आजाद हो गया था। 1969 में शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, हालांकि 1975 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के बारे में अधिसूचना जारी की गई। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। सन 1819 में सिलाई मशीन का आविष्कारक एलाइस हाउ का जन्म हुआ था। आज के दिन यानी 9 जुलाई को विश्व फैशन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1951 में 9 जुलाई के दिन ही देश की पहली पंचवर्षीय योजना को प्रकाशित किया गया था। 1991 में दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा हिस्सा लेने की अनुमति मिली थी। 9 जुलाई 1877 को लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आरंभ हुआ था। 1938 में प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था। और आज के दिन यानी 9 जुलाई के दिन 1925 में सुपरिचित अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त का जन्म हुआ था। चलते चलते हम आपको गुरुदेव की सुपरिचित फिल्म प्यासा का गीत सुनवा देते हैं, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा साहिर ने और संगीत तैयार किया SD बर्मन ने।

और अब आज का सफर बस इतना ही। अपने साथी संजय बैत को इस बात के साथ आज्ञा दे दें, तेज हो जाता है खुशबू का सफर शाम के बाद। फूल शहरों में भी खिलते हैं मगर शाम के बाद। तेरे हिजर में कट जाता है जैसे तैसे, मुझसे रहती है खफा नजर शाम के बाद। नमस्कार।

अभी युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारी इस सभा के शेष और कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी भाषा में कार्यक्रम। शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में हम आपको एक नाटक सुनवाएंगे जिसका नाम है जान। लेखक हैं गोपीराम गोदारा और पेशकश राजेश चड्ढा की रहेगी। साथ ही जानेंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में, जैविक तरीके से कीट नियंत्रण, मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही होंगे गीत भजन और बाजार भाव। फिल्म संगीत होगा शाम 7:45 पर। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से रात 8 बजे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे फिल्म मनचलिक की कुछ जानकारी और फिल्म के नगमे। सुगम संगीत का समय रहेगा रात 9:15। कंट्री वाइड और इनसाइट समसामयिक विषयों पर यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। विज्ञान पत्रिका जयपुर केंद्र से प्रसारित की जाएगी 10 बजे और शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे रात

बजकर 30 मिनट पर। कल सुबह 7:10 पर खेती नवासी कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा मूंग मोठ की उन्नत खेती। सुप्रभात में कल चर्चा के विषय होंगे शब्द जीवन को बदल सकते हैं, मीठा बोलिए मीठा सुनिए, और जानेंगे उस्ताद योजना के बारे में। कुछ फिल्मी दोगाने हम आपको सुनाएंगे कल 9:30 पर। गा मेरे मन गा थीम बेस्ड ये कार्यक्रम होगा दिन में 10 बजे। दिन में 11 बजे से 12 बजे तक आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। फौजी भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए 12:05 पर। खेत खलियान कार्यक्रम में किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार और प्रबंधन। घर आंगन कार्यक्रम में कल ग्रामीण महिलाओं के लिए चर्चा के विषय होंगे नारी का अनमोल रूप माँ, मानसून में मेकअप करते समय सावधानियां, रसोई घर की सावधानियों के साथ साथ कुछ ब्यूटी टिप्स भी बताए जाएंगे। शाम 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। चौपाल कार्यक्रम में कल 7 बजे राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतारों गजरों। मिट्टी दी खुशबू पंजाबी गीतों का ये साप्ताहिक कार्यक्रम होगा कल रात्रि 9:30 पर। कल 10:30 से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थी जानकारी हमारे आज और कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। शाम के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सराय की भाषा में कार्यक्रम।

निर्भीक पत्रकार हन। वो कम करने वाले योद्धा, बुद्धि तो चिंतक, दिल तो कवि, स्वभाव तो संत, ते उम्दा किस्म का भाषण करने वाले इंसान हन। उन्हें दा पूरा जीवन ते चिंतन भारत दे समाज की रक्षा करन विच ते उकू सवारन विच लगा रिया। उन्हें दी भाषण देवन की कला ते एक बारी महात्मा गांधी जी ने आख्या है कि हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना तो माखन लाल जी ही जानते हैं। सन 1933 विच मध्य प्रदेश विच हरिजन दौरे दे वक्त महात्मा जी बाबई पहुँचे तो उन्हें आख्या है, मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वह माखन लाल का जन्म स्थान है। जिस भूमि ने माखन लाल को जन्म दिया उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूँ। एक भारतीय आत्मा, ए ना माखन लाल जी वास्ते बिल्कुल वाजिब उपनाम है पिया। एक भारतीय आत्मा एजा ना है जय वतन की गुलामी कबूल करने की बजाय जेल विच दुख भोग के सुख का आनंद माणिया। सचविच माखन लाल विच देश प्रेम कुट कुट के भरया आया है। वो अपने आप को ते वतन दे सारे जवाने को सिपाही समझते हैं। उन्हें दी सिपाही कविता दे कुछ लाइना सुनो। बोल अरे सेनापति मेरे, मन की घुंडी खोल, जल थल नभ हिल डुल जाने दे, तू किंचित मत डोल, दे हथियार या कि मत दे तू, पर तू कर हुंकार, ज्ञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार, धीरज रोग प्रतीक्षा चिंता सपने बने तबाही, कह तैयार द्वार खुलने दे, मैं हूँ एक सिपाही। माखन लाल ने अपने देश विच एक पत्रकारिता विद्यापीठ स्थापित करने का सुपना डिठा है। उन्हें 1927 विच एक संपादक सम्मेलन विच आख्या है कि हिंदी अखबारें विच संपादन कला वास्ते एक विद्यापीठ की लोड़ है अते एजी विद्यापीठ की देखभाल करने वाला इंसान आला विद्वान, बुद्धिमान, परिश्रमी अते अनुभवी भी होवे। एक संयोग की गाल है कि उन्हें इस सुपने को 1990 विच मध्य प्रदेश सरकार ने साकार किया ते उन्हें दे नाते भोपाल विच एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने लंबे पत्रकारिता के जीवन विच माखन लाल जी ने आवण वाली पीढ़ी को रचना ते संघर्ष का जड़ा पाठ पढ़ाया वो हैरान कर देने वाला है। लिखण को घिन के ते प्रूफ रीडिंग तक का सारा काम माखन लाल जी खुद कर गिनते हैं। एजा है उन्हें विच अपने काम को ईमानदारी ते मेहनत नाल करन दा जज्बा जेड़ा आज मिसाल बन के रह गए। सारे कष्ट को चुपचाप करके सहंदे हन, लेकिन कदें भी करम बीर विच उन्हें इश्तार दे के अपने दुखों का रोवन नहीं रोया। कदें धन वास्ते अपील नहीं की थी। गाहक वधावन वास्ते अपने कालमे विच कदें नहीं लिखा। उन्हें विज्ञापन कट्ठे करके धन जुटाने वास्ते कदें कई आदमी की नियुक्ति नहीं की थी। ऐसे हैं माखन लाल जी चतुर्वेदी। गांधी जी के सच्चे सिपा सलार, अपनी धुन दे पक्के, जिन्हें की नज़र सिर्फ अपनी मंजिल ते आई। माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्धि एक कवि के रूप में ज्यादा है, लेकिन वह एक पत्रकार, निबंधकार ते सिद्धस्थ संपादक हैं। इन्हें दी कविता का जड़ा मूल है वह है राष्ट्रीयता, जैसे त्याग, बलिदान ते कर्तव्य भावना के नाल समर्पण भाव है। इन्हें दी कविता की भाषा सरल है, वह इंसान को जोश नाल भर देती है। इन्हें हिंदी के शब्दों के नाल उर्दू ते फारसी लफ्जों का भी प्रयोग किए, जैसे कारण एक अलग तरीके की सादगी ते मिठास है। इन्हें दी रचनावां विच देश प्रेम का जज्बा साफ नज़र दे। इन्हें अपनी रचनावां विच त्याग ते बलिदान दे रंग घोल दिते हैं, जैसे विच पाठक सरोबार थी वेंदे। माखन लाल जी दियां कुछ कालजई रचनावां हैं, जैसे विचों कुछ का ना है हिम तरंगणी, समर्पण, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले और पुष्प की अभिलाषा। इनके अलावा कुछ कवितावां जिमें अमर राष्ट्र, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, आज नयन के बंगले में, इस तरह ढक्कन लगाया रात ने, उस प्रभात तू बात न माने, किरणों की शाला बंद हो गई छुप छुप, कुंज कुटीरे यमुना तीरे, गाली में गरिमा घोल घोल और मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, इत्यादि। माखन लाल जी ने अपने लेखन दे तरीके नाल अपने वतन दे बहु बड़े तबके को प्रभावित किया ते उन्ने विच देश प्रेम जगाया। उन्ने दे भाषण भी बड़े ओजस्वी ते देश प्रेम नाल ओतप्रोत होंदे हन। इन्ने दे रचनावां आवण वाले कई युगे तोणी आम आदमी वास्ते प्रेरणा दे स्रोत बने रासन। राष्ट्र ने साहित्य की दुनिया का यह अनमोल हीरा 3 जनवरी 1968 को खो दिता ते पंडित जी 79 साल का अपना संघर्षपूर्ण जीवन जी के अंतहीन यात्रा ते निकल गए। देश को उन्हें दे लेखन को लो बहु उम्मीदा हैं। मध्य प्रदेश साहित्य

0: अकादमी देश दी कोई भी भाषा दे काबिल कवि को माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार देंदी है, जेड़ा कि पंडित जी दे देहांत दे 19 साल बाद 1987 को शुरू किया गया। भारत दे पोस्ट ते टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने भी माखन लाल चतुर्वेदी को सम्मान देवन देंदे हुए पोस्टेज स्टैंप दी शुरू की है। ये स्टैंप पंडित जी दे 88वें जन्मदिन 4 अप्रैल 1977 को जारी की गई। आखिर विच उन्हें दी कविता दे कुछ सत्रा पढ़ के मैं अपनी वार्ता खत्म करे सा। श्वेत केश भाई होने को है श्वेत पुतलियां बाकी, आया था इस घर एकाकी, जाने दो मुझको एकाकी, अपना कृपादान एकत्रित कर लें उससे जी बहला लें, युग की होली मांग रही है आओ उसमें आग लगा दें, मत बोलो वो रस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आग लगा भभूत रमाई, मैं ये चला पत्थरों पर चढ़ मेरा दिलवर वहीं मिलेगा, फूंक जला दे सोना चांदी तभी क्रांति का सुमन खिलेगा, मैं न रहूंगा मुकुट और सिंहासन नहीं ये मूछ मरोड़ी, जाने दे सिर लेकर मुझको ले संभाल ये लोटा डोरी। हुणे तुस सुनदे पे आवे सूरज कटपालिया कोलो वार्ता माखन लाल चतुर्वेदी दा जीवन दर्शन। आओ हुण सुनदे हैं सराइकी गीत संगीत।
1: पहला सुनेंदे हां जीशम खान रोखड़ी दा गाया गीत।

ए कार्यक्रम इतें खत्म थींदे मेकुंडे वो इजाजत सारी सराइकी संगत को राम राम। ई कार्यक्रम दे प्रस्तुत करता हन डॉक्टर सुरेश मीणा।

अभी आप सरायकी भाषा में एक कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी होगी और बाद में आप सुनेंगे राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार। समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच मेलबर्न में वैश्विक शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों को कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में छाया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर खुशी जाहिर की है। आज मेलबर्न में शिखर सम्मेलन के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी विश्वास के नए और व्यापक युग में प्रवेश

0: कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए सहयोग को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के सहयोग को नई ऊंचाई मिली है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय की नई शाखाएं बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर वैश्विक समाधान निकाल सकते हैं।
1: एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं।
0: श्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत विकास और प्रगति में विश्वास रखता है।
1: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें राजस्थान सहित सीमा से जुड़े विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी सम्मेलन में मौजूद रहे। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा, घुसपैठ और अवैध प्रवासन, अपराधों पर लगाम और आबादी बदलावों की जानकारी के लिए ये सम्मेलन रखा गया। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन से उत्पन्न खतरों पर अंकुश लगाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और कारणों की पहचान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी पृष्ठभूमि में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने एआई पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि भारत वर्तमान में लगभग आधे वैश्विक क्षमता केंद्रों की मेजबानी करता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि लोगों के प्रयासों से मिली है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत अब तक देश भर में किसानों को 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता मिली है, जिनका मूल्य करीब 9,400 करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन साल 2014-2015 में शुरू किया गया था। इसमें फसल उत्पादन चक्र के दौरान खेती किसानी के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा मेडिकल कॉलेज में कॉटेज वार्ड का शिलान्यास किया। उन्होंने नवनिर्मित पीजी हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री बिरला ने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और आने वाले 2 सालों में इसे बेहतरीन संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉटेज वार्ड की सुविधा से उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जिनका लंबे समय तक इलाज चलता है।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मरीज लंबे समय के लिए इलाज कराने आते हैं और जिनको लंबे समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों के लिए 90 कमरों का क्यूबिकल और कॉटेज वार्ड बनेगा ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी लंबे समय इलाज करने की सुविधा यहाँ पे हो। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा परिसर के अंदर जो जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना गई है ताकि ये वातावरण भी यहाँ पे स्वच्छ रहे, हरा भरा भी रहे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की आज बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कर चोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। इस बीच प्रदेश में कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज कई फर्मों के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की गई। राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से पाली के सोजत में मेहंदी कारोबार से जुड़े समूह पर यह कार्रवाई हुई। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका है। प्रदेश में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। अब तक 38 लाख से

सर्च कार्रवाई की गई। राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से पाली के सोजत में मेहंदी कारोबार से जुड़े समूह पर यह कार्रवाई हुई। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका है। प्रदेश में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। अब तक 38 लाख से ज्यादा लोगों को इन शिविरों से फायदा पहुंचा है। इसी कड़ी में बालोतरा के खारी गांव के शिविर में एक ही परिवार के 53 खातेदारों के बीच वर्षों से लंबित भूमि बंटवारा प्रकरण आपसी सहमति से सुलझ गया। वहीं शहरी सेवा शिविरों के जरिए भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पाली में पीएम स्वनिधि योजना के तहत शिविर में 300 से ज्यादा पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की आज समीक्षा की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जेजेएम के कामों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर घर जल प्रमाणन, सुजलाम भारत आईडी और 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के परीक्षण में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर मिशन की नियमित समीक्षा करने और गांवों में जल गुणवत्ता परीक्षण करने, साथ ही सामूहिक भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। भरतपुर में आज महिला संवाद और सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उन्हें अधिकारों और कानून की जानकारी दी। महिलाओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया सुरक्षा, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाव के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए उल्लेखनीय काम करने वाली 39 महिला स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। उधर पाली में भी पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने महिलाओं को आत्मरक्षा का भी अभ्यास करवाया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश भर में सक्रिय है। 2 जुलाई को प्रवेश के बाद लगभग एक हफ्ते में मॉनसून पूरे प्रदेश में छा गया है। मॉनसून के कारण अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं अच्छी बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में 3 इंच तक पानी बरसा। विभाग ने 10-11 जुलाई तक तेज बारिश का दौर बने रहने की चेतावनी जारी की है। कल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भरतपुर में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। 31 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। जून महीने से अब तक प्रदेश के 7 जिलों में असामान्य, 11 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 5 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बारिश के साथ ही प्रदेश के बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। छोटे बड़े कुल 693 बांधों में से फिलहाल 412 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने और आउटरीच रणनीति को बढ़ाने पर आज जयपुर में विचार विमर्श किया गया। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के निदेशक अनुभव बैरवा की अध्यक्षता में अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में एकीकृत मीडिया आउटरीच पर जोर दिया गया। बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे, श्रम विभाग, इग्नू, भारतीय मानक ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भ्रामक लेबलिंग और नामी ब्रांड के उत्पादों की कॉपी के संदेह पर एनर्जी ड्रिंक की 8000 कैन जब्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि सभी नमूनों को जोधपुर की प्रयोगशाला में भेजा गया है। उधर कोटपुतली बहरोड जिले से भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 10,000 से अधिक एनर्जी ड्रिंक की बोतलें जब्त की। नीमराणा में 150 किलो सिंथेटिक पनीर भी जब्त किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच मेलबर्न में वैश्विक शिखर वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों को कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में छाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केड़िया ने तैयार किया है। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में योग शिविर आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान महेश नवमी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, कबीर जयंती और मुहर्रम के अवसर पर जिले में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हरियाणा से यमुना का पानी झुंझुनू, सीकर और चूरू तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे पेयजल संकट के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। जिले में इस समझौते का स्वागत किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झुंझुनू में कहा कि इस वर्ष भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी तथा आने वाले समय में क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झुंझुनू जिले के पचलंगी गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, योग और भगवान श्री राम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में संस्कार और सेवा की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरा होने पर आयोजित सहकार सप्ताह के दौरान जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सहकारी समितियों की योजनाओं, गोदाम निर्माण और पैक्स कंप्यूटरीकरण की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने किसानों तक सहकारिता योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना का शुभारंभ पातुसरी में किया गया। विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया कि नई व्यवस्था में पात्र श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा तथा मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय में किया जाएगा। योजना में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कामों को प्राथमिकता दी गई है। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि विकास कार्यों के चयन में ग्राम सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिले भर में स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और अन्य विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जाएगा। CMHO डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि घर घर सर्वे कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट किया जाएगा और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 96 भामाशाहों और 29 प्रेरकों का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में जिले के भामाशाहों ने सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग दिया है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर. रवि बाबू ने बिट्स पिलानी में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संचालित फॉडर पैलेट परियोजना की समीक्षा की। परियोजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों से पशु चारा तैयार कर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने परियोजना को ग्रामीण उद्यमिता के लिए उपयोगी बताया। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत अभियान के तहत जिले में युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि महाविद्यालयों, विद्यालयों, ITI और अन्य संस्थानों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवा इस अभियान से जुड़ सके। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: कहो के कोटा मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधा और बधाया जावेला और आवता दो साल में इनने इलाज उन जुड़ी भनाई लिखाई रो बेहतरीन संस्थान बनावन री कोशिश करी जावेला। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहा लोकसभा अध्यक्ष कहो के लंबा बगत ताई इलाज करावन री जरूरत वाला मरीजा ने आ कॉटेज वार्ड नू घणी सत्ता मिलेला।
1: कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मरीज लंबे समय के लिए इलाज कराने आते हैं और जिनको लंबे समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों के लिए 90 कमरों का क्यूबिकल और कोटेज वार्ड बनेगा ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी लंबे समय इलाज करने की सुविधा यहाँ पे हो। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा परिसर के अंदर जो जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना गई है ताकि ये वातावरण भी यहाँ पे स्वच्छ रहे, हरा भरा भी रहे।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा रा अहलकारा सागे आज मीटिंग कीनी। वे चालू माली साल रा आमदनी रा लक्ष्य टेम सर हासिल करण बाबत कहो। श्री शर्मा कर चोरी रे खिलाफ असरदार कार्रवाई करण सारू कहो। इबीचे प्रदेश में कर चोरी रे खिलाफ चलाया जा रहा खास अभियान रा तहत आज कई कारोबारी फर्मा रा ठिकाना माथे खोजबीन करी जी। राज्य GST और वाणिज्यिक कर विभाग री ओरू पाली जिला रा सोजत माए मेहंदी रा कारोबार जुड़िया समूह रा ठिकाना माथे आ कार्रवाई करी जी। महकमो करीब 35 करोड़ रुपया री कर चोरी री शंका जताई है। प्रदेश माए लगाया जा रहा ग्रामीण सेवा शिविर माए हाल ताई 38 लाख हूँ बत्ता लोगों ने फायदो मिलियो है। बालोतरा जिला रा खारी गांव माए लगाई जा शिविर माए एक ही परिवार रा 53 खातेदार बीच बरसाऊ चाल रहा जमीरा बंटवारा जुड़ियो मामलो आपसी सहमति सुलझा लियो चियो। शहरी सेवा शिविर रे जरिए जनता री समस्यावां आगे करी जा रही है। पाली माए लगाई जा शिविर माए 300 बत्ता पात्र लोगों ने PM स्वनिधि योजना रो फायदो दियो चियो। प्रदेश माए जल जीवन मिशन रा तहत चलाई जा रही परियोजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे JJM रा तहत कामा ने ते भगत माए पूरा करण रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव हर घर जल प्रमाणन सुजलाम भारत ID और 100 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाली परियोजनावां रा परीक्षण माए तेजी लावन सारू कहो। भरतपुर माए आज महिला संवाद और सम्मान समारोह राखी जियो। इन माए पुलिस रा अहलकार महिलावां री समस्यावां सुनी। कार्यक्रम माए मौजूद महिलावां ने वारा हक और कानून रे बारा माए जानकारी दी री जी। ईसा गई वाने साइबर अपराध सोशल मीडिया हिफाजत घरेलू मारपीट और उत्पीड़न बचाव रा बारा माए बताई जियो। कार्यक्रम माए SP राजेश मीणा महिलावां री हिफाजत और वहां माए जाग जगावन सारू बेहतरीन काम करण वाली 39 महिला स्वयं सेवकां रो मान कीनो। पाली माए पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग री ओरों महिला सुरक्षा संकल्प अभियान रा तहत कार्यक्रम राखी जियो। इन माए SP मोनिका सेन महिलावां ने खुद री हिफाजत रा तरीका रो अभ्यास करायो। अरब मौसम प्रदेश माए 2 जुलाई ने शुरू हुई चौमासारी बिरखा अब आखा राज्य माए भी वन लगी है। मौसम विभाग ने मुजब काल भरतपुर और उदयपुर संभाग रा कई हलका माए 3 इंच ताई पानी बरसियो। महकमो 10-11 जुलाई ताई तेज बारिश रो दौर चालतो रहवन रा आसार जताया है। काल भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग माए हल्क्यू मझला दर्जा री बिरखा री संभावना है। भरतपुर माए कठे कठे जोरदार मे वेवन रा आसार है। 31 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। जून महीना हाल ताई राज्य रा 7 जिला माए घनी जबरदस्त 11 जिला माए जोरदार 18 माए सामान्य और 5 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूप वनसा गई। छोटा मोटा कुल 693 बंधा मायों फिलहाल 412 माय पानी आवन लग्यो है। बांसवाड़ा जिला रा मैनादर गांव माए जमीरा झगड़ा माए

0: एक ही परिवार रा सात जना जख्मी वे गया जाना जिला अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। घना जख्मी दो जना ना इलाज सारू उदयपुर रेफर करी चिया है। पुलिस रे मुजब दो पार्टियां बीच व्या झगड़ा माए एक ही परिवार रा 11 जना मत है घर माए घुसर हमलो करी चियो। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रा तहत राज्य माए न्यारी न्यारी ठोणा खान पीन री सामग्री री जाँच करी जा रही है। जैसलमेर माए भरमावण वाली लेबलिंग और नामी ब्रांड रा सामान री नकल री शंका माए एनर्जी ड्रिंक री 8,000 कैन जब्त करी ची। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णाराम कड़वासरा बतायो के सगड़ा नमूना ने जांच सारू जोधपुर री प्रयोगशाला माए भेजी चिया है। कोटपुतली बहरोड जिला माए खाद्य सुरक्षा अहलकार एनर्जी ड्रिंक री 10,000 बत्ती बोतना जब्त कीनी। नीमराणा माए करीब 150 किलोग्राम नकली पनीर जब्त करी चियो। केंद्र सरकार रा खास कार्यक्रम और योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण और आउटरीच रणनीति ने बढ़ावो देवण रे बारा माए आज जयपुर माए विचार करी चियो। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रा निदेशक अनुभव बैरवारी सदारत माए अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति री मीटिंग राखी ची। इन माए सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण रा काम माए एकीकृत मीडिया आउटरीच माथे जोर दियो चियो। बैठक माए उत्तर पश्चिम रेलवे श्रम विभाग इग्नू भारतीय मानक ब्यूरो आकाशवाणी और दूरदर्शन रा अहलकार शिरकत कीनी। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। भारत और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्रियां बीच ऑस्ट्रेलिया रा मेलबर्न माए शिखर वार्ता भी प्रधानमंत्री मोदी अणन साझेदारी रा नुआ दौर री शुरुआत बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री सदारत माए राजस्थान समेत राज्यों रा प्रदेशों रा सरहदी जिला रा एसपी री नई दिल्ली माए मीटिंग भी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा ने कर चोरी करण वाला ने खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना और आखर राज्य माए चौमासा री बिरखा सरूफी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के ठीक 7 बजे हैं। अब ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुनिया सगला परिवार ने वेद भाई की घनी घनी राम राम, मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज आप बात करा खरीफ फसला में खरपतवार नियंत्रण की। तो ई मौसम में क्या है, बरसात के दिनों में फसलों के साथ साथ खरपतवार भी तेजियों के बढ़ने लग जाए। जे टाइम रेंता आप वो नियंत्रण ना करा तो ए फसल का पोषक तत्व, पानी, प्रकाश और स्थान पर के कब्जो जमा ले, जखो कि अपनी फसल को उत्पादन जो है वो 20 से लेके 80% तक की बीमा कमी आ जाए। इन खातर किसान भाइयों खातर खरपतवार नियंत्रण की सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, खरपतवार वे अवांछित पौधा हुआ है जका कह के बिना बोए खेतों में उग जाए। यह फसल के साग प्रतिस्पर्धा करे और बांगी वृद्धि ने भी प्रभावित करे और कई खरपतवार कीट और रोगों का आश्रय स्थल भी बन जाए। खरीफ मौसम में किया गया पर्याप्त नमी और तापमान मिलन के कारण खरपतवारों का विकास बहुत तेजी हुए। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग, कपास और दूसरी खरीफ फसलों में खरपतवार जगी है एक गंभीर समस्या जगी है बाबन जावे। जे किसान भाई टाइम पर खरपतवार नियंत्रण नहीं करें तो पौधा की वृद्धि रुक जाए, पौधा कमजोर हो जाए, दाना और फलियां का विकास भी प्रभावित रहे। बात करें प्रमुख खरपतवारों की तो सक्रिय पत्ती वाला खरपतवारों में दूब, सावा, मोथा घास और जगली, बाजरा आवे। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवारों में बथुआ, चौलाई, हिरनखुरी और दुधिया खरपतवार आवे। मोथ वर्ग का जो खरपतवार है बंग मां मोथा और जंगली मोथा प्रमुख खरपतवार।

पा रहे। खरपतवारों की है कि माटी का पोषक तत्वों को ए ज़्यादा उपयोग करे, फसल को पानी और नमी कम कर दे, सूर्य को प्रकाश रोके, खेत में कीट और रोगन के बढ़ावा देवे, कटाई और मढ़ाई में के कठिनाई उत्पन्न करे, फसल की गुणवत्ता और बाजार मूल्य जो है वो घटा दे, और उत्पादन लागत जो है पाकिस्तान भाइयों अपने बढ़ जाए, और खरपतवार नियंत्रण खातर के एक फसल की बुआई के बाद 30 से 35 दिन ज़्यादा जरूरी हुआ है, इन अवधि में किया कि खरपतवारों को नियंत्रण जब पकड़ लिया तो अपनी फसल स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा किए के उत्पादन देसी। और खरपतवार नियंत्रण की बहुत सारी विधियां हैं, जियाँ कि निवारक विधि। सारों पहला किया कि खेत में खरपतवार आपने आने नहीं देना चाहिए, इन खातर किया कि प्रमाणित शुद्ध बीज को उपयोग करना चाहिए, सागे अच्छी तरह सड़ेड़ी गोबर की खाद अपन रेड़नी चाहिए, सिंचाई पानी का सागे खरपतवार का बीज नहीं आने देना चाहिए, खेतांगी जिकी मेड़ है और नालियां ने साफ रखनी चाहिए, और कृषि यंत्रां की सफाई भी अपन टेमो टेम करता रहना चाहिए। और किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण की दूसरी विधि है यांत्रिक और भौतिक विधि। आ सारों सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। इनमें के हाथों निराई गुड़ाई, खुरपी द्वारा खरपतवार निकालनों, कुदालों गुड़ाई, व्हील हो और पावर वीडर आदि यंत्रों का उपयोग करे जावे, सागई मल्चिंग उपयोग हुए, धान की सीधी बुआई और सोयाबीन, मूंगफली और दाना में टेमो टेम पर निराई गुड़ाई बहुत ही लाभकारी रहे। खरपतवार नियंत्रण की तीसरी विधि है सांस्कृतिक विधि। इन विधि के द्वारा किया गया खरपतवारों की वृद्धि किसान भाई कम कर सके, टेम पर बुआई, सही बीज दर, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, फसल चक्र अपनानो और सही पौध संख्या बनाए रखना, और सगे उन्नत किस्मों को चयन करना चाहिए, और घनी और स्वस्थ फसलां खरपतवार ने बढ़ने को अवसर किया के कम देवे। और खरपतवार नियंत्रण की अगली विधि है रासायनिक विधि। जटे मजदूरों की कमी हुए बटे खरपतवार नाशी दवाइयों को अपना उपयोग कर सकें, दवा को चयन फसल और खरपतवार के अनुसार अपने करना चाहिए, और अपन के कई सावधानियां भी रखनी चाहिए, जहाँ केवल अनुशंसित दवा को अपन प्रयोग करना चाहिए, सही मात्रा का उपयोग हुए और सही टाइम पर अपन छिड़काव करना चाहिए, दस्ताना मास्क और जूता अपन पहनना चाहिए, तेज़ हवा और मेघ टाइम छिड़काव अपन नहीं करना चाहिए, बच्चा और पशुओं के छिड़काव वाले क्षेत्रों दूर रखना चाहिए, और पूरे शरीर पर वस्त्र धारण अपन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बातचीत आप और कर सियाँ सगी थाने आगे सुनावांगा नाटक जका को शीर्षक है जान, और लेखक है गोपीराम गोदारा, प्रस्तुत करता है राजेश चड्ढा, पर भी पहला थाना सुना दिया ओ भजन।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: क्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, आप सुने भजन और अब था सुनावा नाटक, जगह को शीर्षक है जान, लेखक है गोपीराम गोदारा और प्रस्तुत करता है राजेश चड्डा।

0: सैकड़े लगत गामरा बराती हो जिसी।
1: अरे रामधन बेटा, वो तो मोटो सो 68 है के 250 पौने 300 बराती छोटा मोटा मिलार हो सके, और इनू ज्यादा भी हो सके भाई।
0: भाई जी एक बात मैं कहूं के
2: बोल।
0: हालत जे कमती पड़े है तो बाजार से किराया रा बराती मिल जिसी, बेहोर कर लेवा।
1: अरे थारो कहने रो काई मतलब है समझोगो नहीं मास्टर।
0: मारी समस्या तो आ बात बार है बाबा, रोजी ना तो थे रेडियो कान रे सारे लगाए रखो, बुराया मत है कटाक्ष करनिया नाटका ने सुन, अरे थे माने सीख लेन खातर कया करो, भूल गया कहीं आ बात या नाटक सुनना ही भूल गया थे।
1: अरे सुरजो, नाटक नहीं भूल सके बेटा, रोटी खानी भूल सके। हाँ
0: बाबा थे एक बात बताओ पछे, भी छोटी उम्र में ब्याह करने माथे कटाक्ष कर तो नाटक सुनो
1: हाँ
0: किसो?
1: सुनो, वो आपने वो नाटक होनी आ पंथावड़ो याद आयो।
0: अच्छा नशे पते की आदत बुरी होवे, इन पर ही की सुनो के?
1: अरे हाँ, सुनो है बेटा, सुनो है अच्छी तरह मास्टर। वो है नी नाटक किशो दिमाग में को आ पुंपो अर बट्टाऊ आज्ञा दोनों नाटक ऐ सुनिया उना माए देख लियो मास्टर। आपने तो जिकी नसे पत्ते की बात है नी कितनी माड़ी होवे आ बात दर्शावे भी नाटक के मायने।
2: अरे मास्टर तू कहनो कहीं चावे सा फिर स्पष्ट क्यों नहीं कवे पाछे?
1: अरे हाँ मास्टर, तू काई कहनो चावे बोल पाछे।
0: मेरी बात सुननी चाहो तो दिन गए आंगणे में भेड़ा हो जाया, मैं सारी बात बता देसी हूँ दिन गए आंगणे में।
1: अरे ठीक है रामधन, ओके कह रहा मास्टर,
2: सुन
1: देख
2: जा
1: ले
2: सुन
1: शाह
2: जा
1: भाई, बात ठीक है।

0: अरे राजू, अरे बेटा वो मास्टर किन्ने गए हो रे? कैवे होनी कैसे भीड़ हो जी यो?
1: काकरो तो ठाई नहीं है, बेरोनी काई कैसी का तन्ने बेरो है दुनिया।
2: इन है बेरो, सुन मास्टर बात ने बांसनी को देवे नहीं, जकी बात कहनी उसी बा कह रहे सी। बेटा हूं जानू, भाई तो मेरो ही है फिर।
0: अरे अबार कठिन है वो। अरे हिलो फाड़ दाने राजू बेटा।
1: काका, ओ काका आयो, भीतर छू बाहर आ जाओ, सगला आगे थे भी आ जाओ।
3: आयो आयो भाई आयो।
0: हाँ अबार बता मास्टर, काई बतावे हो?
4: देखो बाबा, कई एडी बुराइयां है, कुरीतियां है, उन्होंने छोड़ने की कोशिश करा, पर नुई बुराइयां आपा फिरू अपनाने माई लाग रहा।
2: नुई बुराइयां पछे और कौन सी है बता दाने, हुई सुनू मास्टर।
4: भाई आपने समाज में फैलीडी कुरीतियां सुन आज रो नौजवान लड़े है, और उन बुराया ने दूर करने री कोशिश करे। भी नौजवाना रो साथ थे सगड़ा भेड़ा और देवो देवो नी।
0: हाँ बात तो तेरी ठीक लागे मास्टर।
4: भाई बाबा इन बात ने क्यों भूलो के घर घर माटी का चूल्हा हुआ है। आज आपा जान मा 300-400 बराती ले जाने री बात करा, अरे काल ने जना थारे आंगने जान मा इतना सारा बराती आवे तो कहीं उसी सोचो।
2: आपने अठी ने इतना बराती आवे तो थोड़ा ही संभले ला।
4: तो फिर तू साफ साफ सुन, आपने खानदान माए दाइजरी बात ना ही कनाई होई और ना ही हुसी, पछे तू ही तो बिना दाइजरे ब्याह खातर राजी हो गयो नी।
2: मास्टर आप बात तो हूं पहले ही कवाओ कि दाइजो अपने कौन ही चाहिए, बस मारा बराती आवे उनारी सेवा चोखी करनी चाहिए।
4: बराती भी थे घना सारा जोड़ रखा है, इरे अलावा और कहीं है भाई जी?
2: अरे भाई वो आपने धनियों के कवा हो, वो कह दो कि नाचन कुदन खातर वो कहीं हुए के वो बोले हो के तू यार बोल यार तू बता नहीं।
5: बे मोबाइल डीजे और फ्लोर डीजे करना है राजू रे ब्याह में दादा।
4: देखो भाई जी, मैं इन तरह रे खर्चे रे पक्ष में कोनी। एक तो खर्चो घणो होवे, दूजो कान पड़े ही सुने कोनी, और तीजो बगत पर न ढुका हुए न फेरा।
1: काका डीजे तो करनो ही पड़ सी, नहीं तो मेरी दोस्त हमारी नाक कट दी सी। नहीं
5: राजू तेरे ब्याह में जब डीजे ना आयो नहीं तो आपा खेले ही कोनी, तेरी जान में दवाई ले कोनी आपा।
1: देख लो काका, जन धनियो ही नहीं माने तो पछे बाकी रा दोस्त फिर किया मानेगा।
4: देख बेटा राजू, ब्याह शादी रीति रिवाज अपने ठेरी संस्कृति है, एक धरोहर है बेटा, उनरो मजाक नहीं उड़ानो चाहिए जीते।

0: रे जिशा भण्या लिख्या जुआन अपनी संस्कृति ने बिगाड़ सी तो इनो ठोड़ कुंडे सी बेटा है कुंडे सी। आज ब्याह शादी माई भूंडा गीत गाई जे नशा माई धूत और लोग नाचे कुणी रूस जावे पछे मनाने री खातर आगे लारे फिरो बिंगे रिश्तेदार माई धूड़ पड़ जे। अच्छी बात कोनी बेटा अच्छी बात कोनी। मेरी मानो तो आप साफ सुथरी 11 या 21 आदमी री जान ले चलांगा। सारा काम भगत माथे हो जासी पछे आची जीमणवार मारी मर्जी तो आए।
1: बात तो सच्ची है मास्टर जी सागण थारी।
0: एक बात मेरी और सुनो बाबा, जके मूरत माई फेरा होना लिखा है उन मूरत माई फेरा होना चाहिए। राजू बेटा तू चावे जीवन सुख सु बीते तो इना आडंबरा सु दूर रे बेटा दूर दूर रे हूं। अरे फिजूल खर्ची सु तो बचनो चाहिए। अपनी संस्कृति ने जीवता राखता तने ब्याह करनो है बेटा है तने ब्याह करनो है।
1: हाँ बेटा तेरो काको बात तो पतरी गई है। अरे ध्यान से सुन ले पछे ना कही मुन्ने आ।
2: जे बरात में डीजे नहीं तो धनियो बराती नहीं अब कोनी गेला।
0: बाबा मैं चाहूं ना बिजली दी सजावट पर और ना टेंट पर छोरी आड़ा रो खर्चो हुए। उन्हारे दो छोरिया और है जे कर्जे में डूब गया तो पछे उना छोरियां रो ब्याह किन तरह करसी। अबे भी अपना रिश्तेदार है बाबा बने दुख नहीं होना चाहिए।
1: देख रामधन बे मास्टर री बाता सगली सच्ची है पण ब्याह तेरे छोरे को है काले तू इन तरिया ना कह दी के मास्टर रे कहवण छु बिना गाजा बाजा रे तेरे छोरे रा ब्याह करयो है। हां
3: काई बात करो बाबा पछे मास्टर ने इन तरिया ही पढायो लिखायो काई। भई देखो हूँ मास्टरी सह बाता मानूंगा बस थोड़ा छोरा छीपरा ने मना ले तो मन सह बाता मंजूर है।
4: दादा हूँ मास्टर का कह रही सह बाता मानूला पर एक बात मेरी भी माननी पड़ेली बोलो मानोगा कि नहीं।
1: बोल बेटा बोल राजू है तेरी कोई मांग है तो बता अर्जे सही हुई तो क्यों को नहीं मानना भाई।
4: काका थे कहो का फेरा वैदिक रीति शू हो सी तो पचे फिर घूंघट भरता मन्ने भी मंजूर नहीं है।
0: आ बात माने मंजूर है तेरा फेरा जणाई वेला जणा बीननी घूंघट नहीं करेली। भाई मैं बिने बेटी बना के ल्यान लाग रही हूं पचे घूंघटो की सियूं।
1: मास्टर ले भाई जणा रामधन और राजू थारी सगली बात मान ली है तो अबे सुगने जी ने समाचार घाल दियो बेगी बरात में कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 21 आदमी आवेला। डोलाले की गिनती सग गई है ये मास्टर।
3: एर सगे जी ने आ बात भी कह दियो कि किनी तरह रो आडंबर नहीं करे। भाई देखो ना टेंट लगावे नी बिजली आलो खर्चो करे एर दाइजे खातर कतई भाग दौड़ नहीं करे। भाई माने तो सुगने जी री लाडली चाहिए और की नहीं चाहिए।
0: ठीक है भाई जी ओ समाचार सुगने जी ने पूक तो कर देशा। अबे मैं चलू बाबा।
1: हाँ मास्टर चलो भाई।
5: अरे फुला सुगने आपरी छोरी रो ब्याह मांड दियो कहीं।
6: मने कहीं पूछो वो जीवनो आवे उनने पूछो कदरो ब्याह मांडी वे।
5: अरे जीवना ओ जीवना
7: ओ कहीं के वा कहीं हताई लाग रहे हो।
5: मैं सुनिए सुगने आपरी छोरी रो ब्याह मांड रखी है।
7: अल थाने इन बात रो थाइज नहीं है कि आखा तीजरे दिनी तो है।
5: आखा तीज तो नेड़े ही है ब्याह रो सामान खरीद लेनो कहीं।
7: अरे सामान सुमून तो आलतानी की नहीं खरीद दियो है बस कपड़ो लत्तो लियो है और छोरिया छिपरिया ने भेड़ी करी है।
6: अरे वो के बजे थर वो टेंट टूंट किसो करी है भाई।
7: टेंट भैया ना तो टेंट करियो ना वो बिजली आलो खर्चो करियो है। सुगनू का को के हुआ के बरात माए 11 या 21 आदमी आवेला।
5: ए बाता कहने री की हुए हुए की और बरात माए 21 आदमी कनाई आया के लारले दिना फुसरी छोरी रो ब्याह हो कहियो के 51 आदमी आवेला और आदमी आया पूरा 150 सगलो सामान थुड़ गयो घणी थूत होई कई जानी तो रातू ही पाछा भाज गया।
6: फुसरी के बात करो आपने हर खेरे छोरे रे ब्याह की बात कर लियो काई हाल होयो भूल गया के थे रात ने पाले मर गया और सारी रात भूखा मरता तारा गिनता रहा।
5: हुई उन बरात रे पछे सोगन खाली नी आगे सारू जान बरात माए कदे ही नहीं जाऊंला।
7: अरे हरके रे छोरे ब्याह में हरके रे छोरे ब्याह में हूं भी गयो

0: उन जगह छोरी वाला रो कसूर नहीं हो। बारात में 100 आदमी बुलाया, अर गया कितना पता है के 250 आदमी, साथ है 20-25 बैंड आला, बे डीजे डीजे आला अलगा।
1: सुगनेरी छोरी रे ब्याह माई भी तो डीजे और बैंड बाजा वाला ल्यावे ला। पछे 21 बराती किन त्रिया होसी? मेरी तो समझ सु बर है भाई।
0: अले इमें समझ रही के बात है, एक ढोल अड़वासी बरात माए, ना तो बैंड बजाड़ा ना ही डीजे डीजे अड़ासी, इन बातरी खुसर पुसर चले ही गरमाए।
1: चलो अबे किता के दिन रहे भाई, देख ले शा।
0: अल्ले हूं तो थारे साथे बाता लागियो, लुगाइयों ने बुलाड़ गावे हो, आज बिरत बैठ सी, अच्छा चालू हूं।

0: अरे फुल्ला, वो ढोल किने बजे?
1: लागे तो इन्हें अड्डे का नहीं है, सुगनेरी छोरी री बरात आगी लगे, पर आलतानी तो 6 बजे, अबे के बरात आगी?
0: आपा भी चलना भाई, उनको पत्री आईडी है।
1: हाँ, फिर तो आपा ही चला, आओ।
0: चलो भाई चलो, सुगनेरी छोरी और आपनी छोरी माई काई फर्क है, बारात रे स्वागत माई आपा ही खड़े अच्छा लगा।
1: हाँ, चलो।
0: राम राम सुगना, राम राम।
2: राम राम, राम राम, आओ बैठो।
3: चा पानी लाओ रे छोरो।
0: अरे सुगना, बारात कांकड़ माथे आ गई, ढोल बाजे, पर तू ना तो टेंट लगायो और ना बिजली से सजावट कीनी। बारात रो डेरो कठे ओई ठानी है, क्यों भी फुला? हाँ। तने ठाए कहीं?
1: कहीं ठाको नहीं।
2: अरे बुरा फुले ने कहीं पूछे, आप बात तो हूँ बता दियूं, टेंट सजावट और डेरे की जरूरत नहीं पड़ी, जना ओ फालतू रो खर्चो हूँ क्यों करूँ?
1: सुगना, ब्याह शादी माए ईसा खर्चा तो होवे ही है, कठे बारात बिठावे लो, कठे जिमनार करावे लो, आ तो बता तू।
2: भारी सुन, ए खर्चा थे भी तो करिया हा, थे किशो तीर मार लिने हो, हर लारले साल फुस से आपरी दिवडली रो ब्याह मांडे हो, जना ब्याह माई दिखावे दिखावे माई 2 लाख रुपया लगाया, बाकी रो खर्चो तो अलगो है।
1: फुस से तो ब्याह जबरो करो भाई, कई दिन तक गांव री चौपाला में चर्चा चली मेरी।
0: बिग एक माई टेंट लगायो, शहर छू बिजली आला आया, तू किसो जाने को नहीं कोई?
2: ए बाता तो सगली साची है, पर थे ओई जानो कहीं उन ब्याह माई खर्चे छु तंग आ रे छोरा, 5 बीघा जमीन बेचना की। अरे कर्जो आलतानी उदरियो को नहीं, लारे 2 छोरिया मोटियार जवान और घरे बैठी है।
1: जमीन बेच दी? कड़ा बेच दी, मान तो कौन था?
2: जमी तो बेची जकी बेची, अबे छोरी ने रिश्ते खातिर जावे जना आ बात केवे के ब्याह पेली बडोड़ी छोरी रो करियो उन जिसो करो, जिना रिश्तो मंजूर करा, आ सुन पाछा आ जावे फूला मिनख ने आपरी चादर देख री पग पसारना चाहिजे।
0: सुगना बात तो तेरी दमदार है, जे दूजी छोरिया रे ब्याह माओ इन तरह उंदो सुंदो खर्चो करियो तो रही खई जमी एडे लाग जी सी।
2: अरे थे सोचो इन तरह बिजली री सजावट सी कितनी बिजली बले, आज आपा ने खेता माए बिजली री कितनी जरूरत है, ब्याह शादी माए घना बराती बुलार मोटा मोटा टेंट लगार घनी सजावट कर, ब्याह करे तो घनो मोटो वे कहीं, पहली भी तो ए ब्याह शादी होता।
1: सुगना तेरी बाता तो सगली साची है, आज यू मैं परण करा हा तेरे साथ है हा, एर सगला इन तरह ही ब्याह शादी कराला।
2: अरे ए, ए बाता जी ता फेर कराला, चलो अबे बरात आ गई, चलो चला। राम राम सुरजाराम जी, राम राम।
4: राम राम सर, राम राम
0: जी।
2: मास्टर जी कठे दिखे कोनी रामधन जी?
5: सुगना जी, मास्टर थाने रास्ते में नहीं मिलो, कहीं घरे ही गए हो आपने?
2: मास्टर जी के हो के जान वक्त पर पूछ जाती, अरे वक्त से पहले ही
0: ये सुनियो है के जान माए 21 आदमी आसी, अर्थे तो पूरा ही 21 जन नहीं आया हो।
1: इन्हें ही तो कवे है भैरा आदर्श जान।
0: मान गया सगा जी, थे कहो उनने करी दिखायो सब।
5: भाई चलो चलो, अब चलो दुखावरो वक्त होन लाग रियो है, बता तो पछे हो जिसी, चलो
0: चलो सा चलो।
6: अरे डोला एकर बंद कर लाडी, एकर बंद करी ने बींद ने घोड़ी सु नीचे उतारो, ऐ दुखावे रो बगत हो गयो, दुखाओ पहला उसी।
5: हां भाई, बींद ने अठे पंडित जी दे सामने बैठो।
7: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पंडित का मंगलम सनो रियो ओम जयंत मंगल काली पति काली का बंद करो।

0: चलो भाई चलो, अब देर ना करो, वक्त जनता टाइम नहीं लगे। बराती से जिमन आरगा नहीं चलो, और मास्टर तोड़ने वाली रस्म भी पूरी करवाओ थे।
1: हाँ ठीक है भाई।
2: अरे अरे सूर्य जी दहा पर जिमाओ रे, भूखा रह जाला, एक रसगुल्लो लो लो लो, मारा हाथ से भी खाओ नहीं सूर्य जी, लो
3: लो।
4: सुगनो जी अब बस करो, सुगनो जी अब मैं तो पेट भर गयो, पर थारी मनवार छो जी नहीं भरो सुगनो जी।
2: इया पता ने ना लुटकाओ सा की तो खानो पर जी, लो मुंडो खोलो और खाओ दे, लो खाओ।
4: लो सुगनो जी, थाने क्यों निराश करा, पर ते मुंडो खोलो सुगनो जी।
2: हाँ वही ना, आ तो बात है, पट्टू वाला पट्टू के रसगुल्ला
1: छोरियो बींद ने चौरी पर जान दियो, अर्जिया दियो, यो पसाओ थोड़ा पसाओ।
5: हाँ भाई, बींद ने अठी ने बिठाओ, अरे मामो बाइल ने ले रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ ध्वज, ओम मुंडी कुंडी काक्ष, ओम जयंती मलाकाली पति कालिका पारण दुर्गा सीमा, ओम। लियो भाई फेरा रो काज तो पूरो हो गया, तो गिड़तियाड़ा 2 रुपया देना है दे दे दियो। आज मारो जी राजी हो क्यों, मारी 60 बरस री उम्र में ओ पहलो ब्याह हो जको सही मुहूर्त में करवाए हुए। राम जी इनारी जोड़ी हमेशा बनाए राख सी, अब यहाँ करो थे इन्हें आशीर्वाद दे दो छोरा छोरी ने। हरिओम हरिओम।
6: बुला सुबनेरी छोरी रे ब्याह सु आप सगला ने सीख लेनी चाहिए, जान में कमती जानी आवे तो ना कोई रोड़ो रप्पो और ना कोई टेंट पड़े छोटो, और सारा सु मोटी बात आ कि ना ही कोई जानी भूखो सोवे।
2: भाई तबीयत खुश होगी, थे चाओ आ परिपाटी आपने गांव में चाले तो हरेक घर में एक मास्टर जी जेड़ो मिनख होनो चाहिए, जको सीख देश के हर उनने सह मान ले।
7: चलो अब आपा सगला बेड़ा और बरात रे डेरे पर चला, अरबा मास्टर जी रो धन्यवाद करा जका आपा ने इत्ती फूठरी सीख दीनी, और आपने ईड़े माही चाननो कर दियो।
6: चलो भाई चलो सगला भेड़ा होर चला।
7: चलो सर।
2: राम राम मास्टर जी, राम राम।
0: राम राम सा, राम राम। काई बात सुगनो जी, मारे सु कोई गलती होगी जको आप लोग इतना भेड़ा होर आया हो, कुनी बराती की के दिनो तो हूँ हाथ जोड़ माफी चाहूँ।
2: काई बात करो मास्टर जी, थारे जिसा सगा प्रसंगी सगा ने मिले हूँ तो निहालो को निहाले। मारी छोरी थारा आंगने माए जासी, उन जिया जिन तरह मारी बेटी उन तरह थारी बेटी बने रेसी, आ बात मारो माई लो केवे माई लो सर।
0: अबे आ थारी बेटी मारी बू कोनी, अबे आपा सगड़ारी बेटी है, जे आपा बू ने बेटी रो दर्जो दे देवा तो रोजिनारी सासू बुरी खटपट हरमेश खातरी बंद हो जाएगी।
6: धन्य मास्टर जी था, धन्य साथे उन्होंने जगह थाने जन्म दिनो, आज आपने 30 माय थारे जैसा भण्या लिखा नौजवानारी जरूरत है जकी आप पूरी करन लाग रहे हो मास्टर जी, धन्य था।
2: थारे जिसा पढ़िया लिखिया अगुन आर नुई पनपति बुराइया ने दबा देसी, चढ़ाई तो आपनो समाज हर दे सुखरी सांस लेसी।
4: हाँ बे आ है असली सच्ची बात, पर भाई चलो अब मोड़ रह करो थे, अबे वीरो आगे गिरे जार काम भी करनो पड़े लो। चलो भी चलो चलो चलो भी।

तो भाई वो आपां सुनियो नाटक इंगो शीर्षक हो जान और लेखक हा गोपीराम गोदारा और प्रस्तुत करता हा राजेश चड्डा। और अब टाइम है एक गीत सुनगो तो थाने सुनावा सुभाष कटारिया को गायडो ओ गीत।

किसान भाई हो आपने कहना आज बाजार भाव भी ऐड आए तो बंगी बात कर लिया। सारों पहला बात करा सूरतगढ़ अनाज मंडी के भाव की, तो आटा कणक का भाव रहा 2421 ले गए 2441 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा 6706 ले गए 7290 रुपया। ग्वार का भाव रहा 5660 ले गए 5799 रुपया। रायसरेगर अनाज मंडी के भाव की बात करा तो कणक का आटा भाव रहा 2200 ले गए 2758 रुपया। सरसों का भाव रहा 7225 ले गए 7469 रुपया। चना का भाव रहा 5352 ले गए 5491 रुपया। ग्वार का भाव रहा 5600 ले गए 5551 रुपया। और जौ का भाव रहा 2226 रुपया प्रति क्विंटल। जैसर अनाज मंडी के भाव की जब आप बात करा तो अठे सरसों का भाव रहा 7103 ले गए 7170 रुपया प्रति क्विंटल। कणक का भाव रहा 2438 ले गए 2540 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 5401 ले गए 5500 रुपया प्रति क्विंटल। और श्रीगंगानगर अनाज मंडी के भाव की जब बात करा तो अठे सरसों का भाव रहा 5500 ले गए 7680 रुपया। चना का भाव रहा 5225 ले गए 5300 रुपया। कणक का भाव रहा 2075 ले गए 2740 रुपया। ग्वार का भाव रहा 5561 ले गए 5650 रुपया। मूंग का भाव रहा 6611 ले गए 6850 रुपया। और जौ का भाव रहा 2236 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों इंग सा गई आज गो टाइम ही तो वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।

अभी ग्रामीण परिवार चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साहेब से, जिसे गाया किशोर कुमार और साथियों ने, अनजान के लिखे गीत की धुन तैयार की है बप्पी लाहिड़ी ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए, मुझे कुछ कहना है फिल्म में बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक और अनु मल्लिक को।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए कार्यक्रम सुने एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज संजय वैद्य की ओर से। दोस्तों, आज दिन है 9 जुलाई का और जन्मदिन है मशहूर अभिनेता संजीव कुमार का। संजीव कुमार का जन्म 1938 में गुजरात में सूरत में हुआ। बचपन का नाम हरिभाई जरीवाला था। गुजरात को छोड़कर वो माया नगरी मुंबई में फिल्म अभिनेता का ख्वाब लिए आ गए और मुंबई आने के बाद हरिभाई जरीवाला से वो संजीव कुमार बन गए। पहले वो रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मालय की एक्टिंग स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और इसी दौरान 1960 में फिल्मालय की एक फिल्म आई थी हम हिंदुस्तानी। उसमें उन्हें छोटी सी एक भूमिका निभाने का अवसर मिला और उसके बाद धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार इस तरह से छा गए कि एक ध्रुव तारे की तरह उनकी एक्टिंग चमकने लगी। फिल्म संघर्ष में भी एक छोटा सा उनका किरदार था जिसमें उनके अपोजिट दिलीप कुमार थे और दिलीप कुमार की बाहों में दम तोड़ने का संजीव कुमार का दृश्य इतना शानदार था कि खुद दिलीप कुमार सकते में आ गए। और उस फिल्म के बाद संजीव कुमार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका फिल्मी सफर चाहे कम रहा हो, क्योंकि वो मात्र 47 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था, लेकिन जितनी ही फिल्मों में उन्होंने काम किया वो सभी फिल्में यादगार रहीं। हर फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया। नया दिन नई रात एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने 9 रोल किए थे। कोशिश फिल्म उनकी आई थी जिसमें उन्होंने एक गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया था।

डायलॉग उन्होंने चाहे एक ना बोला हो, लेकिन उनकी आंखें, उनके हाव भाव फिल्म में सब कुछ कह गए जो निर्देशक उनसे कहलाना चाहते थे। उन्हीं की एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म आई थी जिसका नाम था मन चली। इसी फिल्म के गीत आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाने वाले हैं। पहला गीत सुनते हैं किशोर कुमार का गाया हुआ। इस फिल्म के सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे और संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दोस्तों, मनचली फिल्म 1973 में आई थी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें हास्य का भी पुट है। राजा नवाथे ने इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये फिल्म 1966 में आई शुतु एक्टी, जो उत्तम कुमार की एक बंगला फिल्म थी, इसका रीमेक था। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया, गीत आनंद बख्शी ने लिखे। फिल्म की कहानी सत्येंद्र शरत के उपन्यास स्वयंपर पर आधारित है, जिसमें नायक द्वारा लड़की को रिझाने के तरीके में टेमिंग ऑफ दी श्लू की झलक मिलती है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में संजीव कुमार, लीना चंद्रावरकर, निरूपा रॉय, नाजिमा, श्रीकांत मोघे, शाह आगा, कृष्णकांत, सुरेखा नाइक और यास्मिन, इन सभी ने फिल्म में अभिनय किया। फिल्म की पटकथा जी आर कामत ने लिखी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिस गीत को किशोर कुमार ने आवाज दी।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा।
0: साथ में आप लीना चंद्रावरकर की आवाज भी सुनेंगे।

मित्रों, फिल्म मनचली एक कहानी है लीना नाम की लड़की की, जो एक जिद्दी, बिगड़ैल और धनवान लड़की है। शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पिता वसीयत करके गए थे कि जब वो शादी कर लेगी तभी उसे अपने माता पिता की दौलत मिल जाएगी। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है जो उनके अभिभावक हैं, और वसीयत के अनुसार जब तक उसकी शादी नहीं होती वो उस दौलत की मालकिन नहीं बन पाती। इसलिए लीना अपनी अच्छी दोस्त पुष्पा की सलाह पर एक योजना बनाती है जिसके तहत वो एक नकली शादी करना चाहती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उसे अपने माता पिता की दौलत मिल जाए और शादी होते ही वो अपने नकली पति को तलाक दे दे। दोनों एक योजना बनाते हैं, एक विज्ञापन देते हैं जिसमें एक योग्य कुंवारे व्यक्ति की तलाश होती है। सुशील कुमार उस विज्ञापन को पढ़ता है जो एक देहरादून में रहता है। लीना अपनी दोस्त पुष्पा के साथ अनुबंध के तहत शादी करने के लिए देहरादून जाती है। वहाँ स्टेशन पर उसे सुशील कुमार मिलता है, लेकिन वो उसकी शक्ल को पसंद नहीं करती। वो छिप जाती है और उसके बाद एक दूसरा युवक संजीव कुमार वहाँ आता है। वो उसकी मदद करता है, उसे एक रात में ठहरने के लिए होटल दिलाता है। वो इतना होशियार है, इतना चालाक और इतना वाकपटु है कि वो खुद उसका नकली पति बनने के लिए अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में पेश करता है। चूंकि लीना बिना पति से शादी किए घर नहीं जा सकती, इसलिए वो संजीव कुमार के साथ नकली शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि शादी के दो दिन बाद वो उसे तलाक दे देगा। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, संजीव कुमार अपने व्यवहार से उसके चाचा चाची को प्रभावित कर देता है। पुष्पा भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसकी घर वालों के सामने छवि बन जाती है। आगे क्या होता है जानेंगे इस गीत के बाद।

इसलिए वो सारी संपत्ति उसे सौंप दें। चाचा कहते हैं कि उसके पति को समाज से परिचित करवाना है और इसके लिए वो एक स्वागत समारोह का आयोजन करेंगे और उसके बाद सारी संपत्ति लीना को मिल जाएगी। पार्टी का आयोजन होता है। चाचा और चाची उसकी सारी संपत्ति के कागजात, नकदी, गहने सुशील कुमार और लीना दोनों को सौंपते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सुशील कुमार एक अच्छा लड़का है और वो लीना की देखभाल सही तरीके से कर सकता है और सारी संपत्ति की वो रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि लीना एक जिद्दी औरत है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है, इसलिए कहीं वो धन का दुरुपयोग ना कर दे। सुशील कुमार को सारा सामान, सारी संपत्ति, सारे रुपए पैसे जेवरात दे दिए जाते हैं। सुशील कुमार वहाँ से चला जाता है। लीना को लगता है कि वो सारी संपत्ति लेकर वहाँ से फरार हो गया है। कुछ देर बाद सुशील कुमार यानी संजीव कुमार वापस लौटता है और लीना को कहता है कि मैंने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है, नकदी और गहने बैंक लॉकर में रख दी हैं, जिसकी चाबी वो लीना को सौंप देता है और ये भी कहता है कि मैंने मजिस्ट्रेट से तलाक के सारे कागजात तैयार कर लिए हैं, बस तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। लीना सारी बात को सुनकर शर्मिंदा होती है कि सुशील कुमार उसकी धन संपत्ति का लालची नहीं है, क्योंकि इतने दिनों के साथ के बाद उसे मन ही मन संजीव कुमार से प्यार भी हो जाता है। लीना उसे कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन सुशील कुमार कहता है कि यदि वो उससे सच्चा प्यार करती है तो सारी संपत्ति को छोड़कर उसे उसके साथ चलना होगा। लीना तैयार हो जाती है। तभी पुष्पा उसकी सहेली दूसरे सुशील कुमार के साथ वहाँ लौटती है और तब ये भेद खुलता है कि जिस सुशील कुमार की पुष्पा बात कर रही थी वो असल में संजीव कुमार का मैनेजर है और संजीव कुमार देहरादून का एक बहुत बड़ा अमीर जमींदार हैं। इसके बाद दोनों हंसी खुशी साथ रहते हैं और जो अनुबंध का विवाह होता है वो सच्चे विवाह में तब्दील हो जाता है। चलते चलते कार्यक्रम का एक और गीत हम आपको सुनवा दें लता की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से। अभी आप इस कार्यक्रम में फिल्म मनचली के नगमे और फिल्म संबंधी कुछ जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और उसके बाद बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे। आइए अब हम आपको अपने दिल्ली स्टूडियो लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यक्रम को आज की हेडलाइंस के साथ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हुआ। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू होगा और 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो चुका है और अब से एक से दो दिनों में फाइनल की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन खिलाड़ी खिताबी मुकाबले के लिए दांवपेच लगाते नजर आएंगे। आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जहाँ कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अब से कुछ देर में मार्ता कोस्यूब और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी।
1: पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने इस विंबलडन में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के उप विजेता फ्लेवियो कोबोली को 6-4, 7-6, 6-0 से हराकर पुरुषों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल हुए क्वार्टर फाइनल में फेरी ने कोबोली को 2 घंटे और 14 मिनट तक चले मुकाबले में मात दी। इसी के साथ आर्थर क्रोएशियाई दिग्गज गोरान इवानिसेविच की बराबरी करते हुए विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। एक तरफ फेरी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है तो दूसरी ओर ज्वेरेव ने भी अपने शानदार सीजन को जारी रखते हुए कुछ अहम उपलब्धियां हासिल की। 1.5 महीने पहले रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद ये जर्मन खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचा है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेलर फ्रिट्स को 6-4, 6-4 और 6-2 से हराकर अपना सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। अब उनका मुकाबला आर्थर

0: पेरी से कल होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में यानिक सिनर का मुकाबला अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए खेल रहे नोवाक जोकोविच से होगा। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को खेला जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे प्राचीन ये खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम माना जाता है हवर्ष का। सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष सेमीफाइनल के जो आज के मुकाबले खेले जा रहे हैं दोनों मैच को लेके, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास?
2: शक्ति, अभी कैरोलिना मुचोवा और कोको गॉफ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है जो कि बहुत ही एक कांटे की टक्कर पे चल रहा है, क्योंकि पहला सेट कैरोलिना ने 6-2 से जीता, उसके बाद कोको गॉफ ने अगला सेट 6-1 से जीता। अभी मुकाबला तीसरे सेट में 6-6 की बराबरी से चल रहा है और मैच पॉइंट पे गेम चल रहा है। इसके कुछ ही देर बाद मार्ता कोत्स्युक और लिंडा नोस्कोवा जो है वो आमने सामने नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में इस बार बहुत सारे उलटफेर होते नजर आए हैं। एलिना रायबकीना, अरेना सबालेंका और सेरेना विलियम्स, जिन्होंने इस साल वापसी करी विंबलडन में, वो भी बाहर हो गई हैं। तो इस बार हमको एक नया चेहरा विजेता के रूप में दिखाई देगा।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक नया चैंपियन मिलेगा। और जिस तरह आपने अभी मुकाबले के बारे में बताया, तीसरा सेट चल रहा है और एक बेहद कड़ा और करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बार हमने विंबलडन में ऐसे मुकाबले देखे भी कि जो लोग सोचते थे कि ये 1 से 1.5 घंटे का खेल है, वो 5-5 घंटे तक के मुकाबले चले, तो ये आज का हाल है। और कल कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं विशेष मेंस सिंगल्स में?
2: मेंस सिंगल्स में जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो आर्थर फेरी और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव हाल ही में अभी फ्रेंच ओपन के विजेता हैं और आर्थर फेरी ने वाइल्ड कार्ड से एंट्री ली थी इस टूर्नामेंट में और बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक डी जोकोविच के बीच खेला जाएगा। जोकोविच 7 टाइटल पहले ही जीत चुके हैं, वो अपने 8वें टाइटल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रोजर फेडरर जो महान दिग्गज खिलाड़ी, वो 8 टाइटल जीत चुके हैं। तो अगर जोकोविच ये टाइटल जीत जाते हैं विंबलडन का, तो वो रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
1: जी बिल्कुल, सर्बिया के इस खिलाड़ी की नज़र जो है अपने आइडियल रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड पर भी होगी कि उसकी बराबरी की जाए। लेकिन अभी कह सकते हैं कि एक बेहद कड़ा सेमीफाइनल मुकाबला उनको खेलना है सिनर के साथ। और अब इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप की, जहां पर आज से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू होंगे। आज देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। तो आइए जानते हैं किन किन टीमों ने इस दौर में जगह बनाई।
3: फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच धीरे धीरे अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ रहा है। 48 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में अब सिर्फ 8 टीमें बची हैं। फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। कुल 8 टीमों में से 6 टीमें यूरोप की हैं। इन 4 मैचों की विजेता टीम सेमीफाइनल खेलेगी और फिर फाइनल के बाद विश्व फुटबॉल को नया विजेता मिलेगा। इस वर्ष कई उलटफेर भी देखने को मिले, जब नॉर्वे ने ब्राजील जैसी चैंपियन टीम को राउंड ऑफ 16 में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि पराग्वे ने 4 बार के विजेता जर्मनी को राउंड ऑफ 32 के मैच में पेनल्टीज द्वारा हराकर उनका सफर समाप्त किया। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहले भी फीफा विश्व कप जीत चुकी हैं, जबकि मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम को अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। इनमें से कोई भी टीम अभी तक फाइनल में नहीं पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर उन टीमों का बढ़ता है जो पूर्व चैंपियन रही या फिर अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही टीमें कोई करिश्मा करती हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो यूरोप का दबदबा एकदम एक तरफा देखने को मिलता है। 8 में से 6 टीमें हैं विशेष हमारे साथ हैं। विशेष, आज का जो मुकाबला होना है मोरक्को और फ्रांस के बीच में, किसका पलड़ा कितना भारी है?
2: देखिए शक्ति, मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांस जो है वो 2 बार की विश्व विजेता रह चुकी है। फीफा विश्व कप उन्होंने 2 बार जीता है। और वहीं मोरक्को की अगर बात करें तो उन्होंने इससे पहले सिर्फ 1 सेमीफाइनल मुकाबला ही खेला है, तो ये उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। अगर इस विश्व कप की बात करें तो फ्रांस ने अपने पहले मुकाबले में सेनेगल को 3-1 से, दूसरे में इराक को 3-0 से, फिर नॉर्वे को 4-1 से और स्वीडन को 3-0 से और पैराग्वे को 1-0 से हराया था। तो फ्रांस जो है वो डोमिनेट करते हुए खेल रही है इस बार। वहीं अगर मोरक्को की बात करें तो उन्होंने प्रभावित किया है अपने खेल से, जब उन्होंने ब्राजील के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला, स्कॉटलैंड को हराया, हेती को हराया और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड्स को पेनल्टी में 3-2 से

0: टस दी और कनाडा को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 3-0 से हराया। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन इसको जीतेगा। हालांकि फ्रांस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और जो उनके मिडफील्डर हैं डियाज, उन्होंने अटैकिंग की जिम्मेदारी ली है इस बार और कहा है कि हम लोग किलियन एम्बापे को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और कप्तान अशरफ हकीमी जो हैं मोरक्को के, उन्होंने भी इस चीज़ पर दिखाया है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है कि टीम जो है तैयार है एक बड़े मुकाबले के लिए और ऐसा ही एक बड़ा मुकाबला इंतज़ार कर रहा है ब्रिस्टल में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ अपना चौथा T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को अगर ये सीरीज ड्रॉ करानी है तो हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा।
2: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इस दौरे की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल श्रृंखला में 2-0 से आगे है, जबकि श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। तीसरे T20 में इंग्लैंड से मिली 125 रनों की करारी हार के बाद टीम बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव कर सकती है। टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

0: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इस दौरे की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल श्रृंखला में 2-0 से आगे है, जबकि श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। तीसरे T20 में इंग्लैंड से मिली 125 रनों की करारी हार के बाद टीम बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव कर सकती है। टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में अच्छी लय में दिखे हैं, हालांकि युवा वैभव सूर्यवंशी 2 मुकाबलों में अब तक अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे हैं। ऐसा ही हाल कप्तान श्रेयस अय्यर का भी रहा है, जो अब तक सीरीज में अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं ईशान किशन, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। शिवम दुबे कुछ हद तक लय में जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। श्रृंखला में अब तक इंग्लिश गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते ही नजर आए हैं। वहीं अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो उसमें भी धार दिखाई नहीं दी है। बीच के ओवरों में कमजोर और महंगी गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को पिछले दोनों मुकाबलों में खामियाजा उठाना पड़ा है। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए घरेलू सरजमी पर इस सीरीज में अब तक सब कुछ सही घटता नजर आ रहा है। फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथिल, सैम करन और टॉम बेंटन भी लगातार बल्ले से रन बना रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के लिए सरदर्द साबित हुए हैं, जबकि जोश टंग, आदिल रशीद और विल ने भी इंग्लैंड के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में भारत एक नई ऊर्जा और रणनीति के साथ मैदान पर उतरकर अपना लक्ष्य सीरीज ड्रॉ कराने पर रखेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो श्रेयस अय्यर की मैन इन ब्लू चाहेगी कि आज इस मुकाबले को जीता जाए, और जिस तरह की अब तक ये सीरीज गई है, कुछ अच्छी और मीठी यादें लेकर के इंग्लैंड से लौटा जाए। और ऐसी ही एक याद जुड़ने वाली है अक्षर पटेल के खाते में, यदि वो आज प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, उनको मौका मिलता है, तो ये उनका 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा। इस मौके पर अक्षर पटेल ने खुद भी कहा कि वे इस उपलब्धि के लिए बेहद उत्साहित हैं।
2: मैं फर्स्ट टाइम T20 खेल रहा था, तब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यार मैं 100 मैच खेलूंगा। बहुत ही स्पेशल टूर रहेगा ये इंग्लैंड वाला मेरे लिए, क्योंकि जैसे सेकंड T20 में 100 विकेट हुए एंड फोर्थ T20 में 100 मैचेस हो रही है, सो यू नो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है एंड मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट को।
1: एक ऐसा ही स्पेशल डे कल भी इंतजार कर रहा है, जहां महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टीमें एकमात्र टेस्ट मैच के लिए ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगी। 140 साल पहले इस मैदान ने पहले पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच की मेज़बानी की थी, और अब ये मैदान 140 साल के बाद पहली बार महिला टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल के क्षेत्र में एक दूसरे के अहम सहयोगी हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेलों के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ है।
3: भारत के एथलीट, भारत की टीम्स बेटर से बेस्ट होती जा रही है, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है, भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने भारत में खेलों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
3: खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, इनमें लाखों एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है, सांसद खेल महाकुंभ से गांव-गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिख रहा है।
1: तो खेल हर क्षेत्र में जोड़ने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस के साथ बैठक के बाद श्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की तुलना क्रिकेट के खेल से की, और श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों की मेजबानी करेंगे।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है, पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी, आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे।

0: हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
1: तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक शानदार पार्ट कहा जा सकता है इसको, और इसी कड़ी में भारत में भी एक शानदार पहल की गई है। अगले दशक में भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाने के मकसद से खेल मंत्रालय ने आज ओलंपिक खेलों से जुड़े सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी NSF को निर्देश दिया है कि जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल खेले जाने हैं उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के या फिर सिलेक्शन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स या फिर मापदंड हैं उनको समय रहते ही सार्वजनिक कर लिया जाए। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं अश्वथ एस की, जिन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर रॉबिन राउंड में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। कन्याकुमारी के इस 17 वर्षीय लड़के ने अंतिम दौर में काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कर्णन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण

0: प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7-सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में

सुगम संगीत कार्यक्रम में भी आप हरिहरन की गाई गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल PHDCII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
2: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
0: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या है और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
1: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया

0: एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में। क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है। तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है AI के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को

0: जॉब्स हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई हैं जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सिलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है। डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर

0: है 9289904044।
1: कंट्री वाइड

लीजिए फिल्म संगीत सुनिए।

शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे नौशाद। कार्यक्रम का अगला नगमा दाग फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। गीत लिखा शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पाकिजा से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, बोल लिखे कैफ भोपाली ने और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में सुनिए हसरत का लिखा गीत। मोहम्मद रफी के साथ गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर ने और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर है।

अब सुनिए इंदिवर का लिखा गीत फिल्म उपासना के लिए। गीत को गाया मुकेश ने और धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने।

आज कार्यक्रम के आखिर में सुने ब्लैकमेल फिल्म में किशोर कुमार के साथ आशा, माफ कीजिए, लता मंगेशकर को। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए शास्त्रीय संगीत के एक कार्यक्रम में सुनिए साहित्य परवेज से सितार पर बजाया राग पुरिया धनाश्री।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप शाहिद परवेज से राग पुरिया धनाश्री सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप बारी बारी से

0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन

0: is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ। कल सुबह 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद।